103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी एफएम शिमला है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप हमें 103.7 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। 6 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ईश्वर की भक्ति में अपार शांति और आनंद है। आइए खुद को उस अनंत शक्ति को सौंप देते हैं। इसी पावन भावना को शब्दों और सुरीले भजनों से व्यक्त करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम हिमांजलि।

न मूरत में, न तीरथ में, न शब्दों के आडंबर में, प्रभु तो बस बसते हैं भक्त के अटूट विश्वास में। परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता, बस उन्हें प्रेम से पुकारना पड़ता है।

हिमांजलि भक्ति रस ये कार्यक्रम में आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। 6:40 होने को हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ मानस गान।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण।

की भांति सुंदर भाई जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत मानस गान, गायक कलाकार लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और साथी, संगीतकार सतीश भाटिया। FM शिमला 103.7 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

FM शिमला 103.7 MHz पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। FM शिमला पर लीजिए अब पेश है FM न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइन साथ में प्रियंका ठाकुर। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के सभी पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने जारी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने

0: शिमला में वित्त विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य सभी को अगले महीने के पूरे वेतन के साथ स्थगित वेतन का बकाया जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से हर महीने 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने HRTC के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कल शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 लेन परियोजना में सुरंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कल चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से अपने जीवन से प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। शिमला के निकट जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय लोहारप में 4 वर्षीय ललित कला स्नातक BFA डिग्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून तय की गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामयानी विष्ट ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी BFA डिग्री पाठ्यक्रम के तहत पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, संगीत, गायन, वाद्य, तबला और नृत्य विषयों में प्रवेश ले सकते हैं। इस तक में बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: ये है एफएम शिमला 7 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलेंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
1: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 7:05 हुए हैं और ये समय है चिंतन का।
2: प्राचीन समय की बात है, दैत्यराज प्रह्लाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उस समय इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुक्राचार्य के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया। शुक्राचार्य बोले, इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रह्लाद को है। ये सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रह्लाद के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, राजन, मैं श्रेय प्राप्ति का उपाय जानना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। प्रह्लाद ने कहा, वे प्रवर, मैं तीनों लोगों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरे पास आपको उपदेश देने का समय नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूँ। ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा देखकर प्रह्लाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आने पर उन्होंने उसे ज्ञान का तत्व

समझाया। ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम गुरु भक्ति का परिचय दिया। उसने प्रह्लाद की इच्छानुसार न्यायोचित रीति से भली भांति उनकी सेवा की। फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार ये प्रश्न किया कि त्रिभुवन का उत्तम राज्य आपको कैसे मिला। प्रह्लाद ने कहा, विप्रवर मैं राजा हूँ। इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब भी वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं उस समय संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ। यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, किसी का दोष नहीं देखता, धर्म में मन लगाता हूँ, क्रोध को जीतकर मन को काबू में रखकर इंद्रियों को भी सदा वश में किए रहता हूँ। प्रह्लाद से इस प्रकार उपदेश पाकर वो ब्राह्मण उनकी सेवा में लगा ही रहा। तब उन्होंने कहा, विप्रवर तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है, तुम्हारे इस बर्ताव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील ग्रहण करने की इच्छा है, यही वर दीजिए। ऐसा वरदान मांगने पर प्रह्लाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। फिर भी तथास्तु कहकर उन्होंने वो वर दे दिया। इतने में ही उनके शरीर से एक परम कांतिमान छायामय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसे देखकर प्रह्लाद ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं शील हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया इसलिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो तेज वहां से अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके अदृश्य होते ही उसी तरह का दूसरा तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ। प्रह्लाद ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, प्रह्लाद मुझे धर्म समझो, जहां शील होता है मैं भी वहीं रहता हूं। यूं कहकर वो भी वहां से विदा हुआ। त्यों ही तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ। उससे भी वही प्रश्न हुआ। उस तेजस्वी ने उत्तर दिया, असुरेंद्र मैं सत्य हूं और धर्म के पीछे जा रहा हूं। सत्य के जाने पर एक और महाबली पुरुष प्रकट हुआ। पूछने पर उसने कहा, प्रह्लाद मुझे सदाचार समझो, जहां सत्य हो मैं वहीं रहता हूं। उसके चले जाने पर उनके शरीर से बड़े जोर की गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर बोला, मैं बल हूं और जहां सदाचार गया वहीं स्वयं भी जा रहा हूं। तत्पश्चात प्रह्लाद के शरीर से एक प्रभावी देवी प्रकट हुई। पूछने पर उसने बताया, मैं लक्ष्मी हूं, तुमने मुझे त्याग दिया है इसलिए यहां से चली जाती हूं, क्योंकि जहां बल रहता है मैं भी वहीं रहती हूं। प्रह्लाद ने पुनः प्रश्न किया, देवी तुम कहां जाती हो? वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं। लक्ष्मी बोली, तुमने जिसे उपदेश दिया है उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तीनों लोकों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वो उन्होंने हर लिया। धर्मज्ञ तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई थी, ये जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है। धर्म सत्य सदाचार बल और मैं लक्ष्मी ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही सबकी जड़ है।

डॉक्टर हुकुम शर्मा की प्रस्तुति चिंतन अभी आप सुन रहे थे। आपने ट्यून इन किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज किस वक्त पर आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन सकते हैं।

अब से थोड़ी ही देर बाद 7:15 पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला आप सुनेंगे। 8:32 पर लोक संगीत के बाद 8:45 पर कार्यक्रम कानून की बात। विषय है नालसा एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016। श्री कुलदीप शर्मा न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर से भेंट करेंगे इसमें अनुज कुमार। सुबह 9:00 वार्ताकार

कुदरत के रंग कार्यक्रम में 9:31 पर लेकर चलेंगे आपको वादियों की सैर पर फिल्मी गीतों के संग। ईमेल बेस्ड रिक्वेस्ट कार्यक्रम म्यूजिक मेल में भेजिएगा हमें अपनी डिजिटल चिट्ठी 10:00 और ईमेल पर ही बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन 9:30 पर आप सुन सकते हैं।

सुबह 11:05 पर गीत पुरानी फिल्मों से, 11:30 पर पहाड़ी संगीत, महिला सम्मेलन आप सुनते हैं 12:20 पर। एक 1:10 का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का, 2 सुनिएगा सब रंग, शिखरों के स्वर में सुनेंगे लोकगीत 2:30 पर, 3:10 पर ओल्ड हिट फिल्म संगीत, द वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम युववाणी 3:30 पर आप सुन सकते हैं।

शाम 7:10 पर किसानी बागवानी से संबंधित कार्यक्रम कृषि जगत रोजाना आप सुनते हैं। रात 8 बजे भूले बिसरे गीत, 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम, 10 बजे गजलें और 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

0: तो ये तमाम कार्यक्रम आज आप FM शिमला 103.7 MHz पर सुन सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला आप सुन रहे हैं और अब वक्त है हमारी दैनिक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का।

Good morning, Shimla. नब्बे वर्षों का ये सफर गूंज रहा है घर घर में, हो भी क्यों ना आखिर फिर। आकाशवाणी बसती है हर भारतीय के अंतर में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संकल्प महान, सुर शब्द और समाचार से इसने जीता हिंदुस्तान। ये आकाशवाणी है। जब ये स्वर कानों में आता है, सुबह की पहली चाय के साथ पूरा देश जाग जाता है। खेती किसानी की बातें लेकर आया कृषि दर्शन, लोक रंग और धुनों से जिसने किया सबका मनोरंजन। हवा महल के झरोखे से हंसी के फव्वारे छूटे, नाटक और

झलकियों के रंग कभी ना हमसे रूठें। युवा दिलों की धड़कन बनकर विविध भारती आई, सदाबहार फिल्मी गीतों की अनमोल सौगात लाई, क्रिकेट का रोमांच जगाती, आंखों देखा हाल सुनाती। फिर वक्त बदला, दुनिया बदली, बदला जीने का अंदाज, पर आकाशवाणी ने कभी नहीं छोड़ी अपनी साख और आवाज। अब तरंगे डिजिटल हुई, बदला है इसका रूप, एफएम की ठंडी छांव में डिजिटल क्रांति की धूप। न्यूज ऑन एआईआर ऐप से अब मोबाइल में समाया है, पॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग का नया दौर अब आया है। सोशल मीडिया के मंचों पर भी अब ये शान से गाता है, आधुनिक युग का नया रेडियो हर पीढ़ी को भाता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुर और शब्दों के इस बेमिसाल सफर में आप सभी श्रोताओं ने हर कदम पर हमारा साथ देकर इसे जीवंत बनाए रखा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला भारती के साथ।

वक्त की गर्द में छुप जाते हैं चेहरे अक्सर, बस इतिहास ही है जो सच को जिंदा रखता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम में आप बात करते हैं आज के इतिहास से कुछ विशेष घटनाओं की।

0: सन 1658 में आज ही के दिन औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष के दौरान अपने पिता और तत्कालीन सम्राट शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया। इसके बाद औरंगजेब ने स्वयं को शासक घोषित किया। आज है भारतीय प्रसारण इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन। 8 जून 1936 को भारत की रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर औपचारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो को वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारण के रूप में आकाशवाणी नाम दिया गया था और ऑन एयर उपयोग में लाया गया। आठ जून 1948 को भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। ये उड़ान मेलबर्न प्रिंसेस विमान द्वारा बॉम्बे से लंदन, जो कि काहिरा और जिनोवा होते हुए शुरू की गई थी। इस जहाज में 35 यात्रियों के साथ अपनी उड़ान भरी। में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत वॉशिंगटन के सभी रेस्टोरेंट्स के लिए अश्वेत लोगों को भोजन परोसना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया। ये अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की बड़ी जीत थी। 9 अंतरिक्षयान को 8 जून 1975 में लॉन्च किया था। ये यान ने इतिहास में पहली बार शुक्र ग्रह की सतह की तस्वीरें धरती पर भेजी थी। 8 जून 2004 को दुनिया ने एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी, जब शुक्र ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरा। ये घटना इससे पहले 1882 में देखी गई थी। इसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आम लोगों ने लाइव देखा था। तो ये तो थी आज के इतिहास से कुछ विशेष घटनाएं। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर आप बने हुए हैं हमारे साथ, सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। और अब वक्त है एक और गीत का।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। और आपको बता दें कि शिमला की रौनक दोगुनी हो चुकी है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल 2026। पूरे 5 दिन के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान पर ये फेस्टिवल होगा 8 जून से 12 जून तक। इसके बारे में आपको देंगे पूरी जानकारी, पर अभी वक्त है एक गीत का।

गुड मॉर्निंग शिमला, इस प्रोग्राम में आप बने हुए हैं हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की। इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की जिसका आज है पहला दिन, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक अलग अलग रंग देखने को मिलने वाले हैं। फेस्टिवल का शानदार आगाज होगा पूरे हिमाचल से आए लोक कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ रिज मैदान पर जुटेंगे। पहाड़ी स्वाद महोत्सव फूड स्टॉल्स की शुरुआत होगी। हिमाचली संगीत को दर्शाते लोक नृत्य पेश होंगे। इतना ही नहीं, बच्चों और युवाओं के लिए ओपन एयर पेंटिंग कॉम्पिटिशन, कैनवस ऑफ द हिल्स और श्यामला मंथन वाद विवाद प्रतियोगिता। शाम को श्यामला मुशायरा कवि सम्मेलन, जहां नामी कवि सुनाएंगे अपनी रचनाएं। इसके साथ ही वॉइस ऑफ माउंटेन सिंगिंग कॉन्टेस्ट होगा और गूंजेंगे सुर हिमाचल के।

हर रोज होगा कुछ नया कुछ खास। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। जी बात कर रहे थे इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की। इस फेस्टिवल में और भी होगा बहुत कुछ खास। पारंपरिक परिधानों में सजी सैकड़ों महिलाओं द्वारा की जाने वाली है महानाटी। डॉग शो, माई चाइल्ड माई प्राइड बेबी शो, पहाड़ी फैशन शो भी देखने को मिलेगा, जिसमें लोकल सिल्क और क्राफ्ट को प्रमोट किया जाएगा। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एंटी चिट्टा वॉलीबॉल चैंपियनशिप, फ्लावर शो, सेलिब्रिटी नाइट जिसमें मशहूर पंजाबी सिंगर्स धूम मचाएंगे, तिब्बतियन संस्कृति की मशहूर झलक देखने को मिलेगी, तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट प्रस्तुतियां देंगे। सूफी और लोक संगीत के साथ समर फेस्टिवल 2026 का समापन होगा 12 जून को। तो तैयार हो जाइए इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल के लिए।

गुड मॉर्निंग शिमला। ये प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। तो प्यारे श्रोताओं, आज सुबह 8:45 पर कानून की बात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें नालसा एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 इस विषय पर आप सुनेंगे श्री कुलदीप शर्मा, न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर की बातचीत अनुज कुमार से। और संस्कृत भाषा का महत्व इस विषय पर वार्ताकार मनमोहन प्रकाश से सुनेंगे हिंदी में वार्ता सुबह 9:00।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हंड्रेड 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला और अब वक्त है FM न्यूज हेडलाइंस का।
2: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के समीप संजौली में लगभग 3 करोड़ पैसे दी की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मशोबरा में नशा निवारण केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहली सांस्कृतिक संध्या पर आज राज्यपाल कविंदर गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान आज कवि सम्मेलन सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। स्टार नाइट में बॉलीवुड गायक शबाब साबरी अपनी प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने उम्मीदवार

0: से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट करने का आग्रह किया है। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस वर्ष 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमरकृति रश्मिरथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रश्मिरथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। इस समय बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: ये है आकाशवाणी एफएम शिमला। 8 बजने को हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
5: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।

0: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 200

0: 162 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली

0: पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Top front page headline in the Statesman writes, Nepal signals pragmatic reset in ties with India during foreign minister's visit, backing bilateral route on border issue. Ministry of Home Affairs approves deployment of 670 companies of CAPFs, marking one of the largest ever multi-layered security arrangements for Amarnath Yatra, reports the Asian Age. An editorial in Hindustan Times states how SAARC offers India what other forums cannot. It empowers Delhi amidst global turmoil with no guarantee needed from any external actor in setting the terms of the organization. In an extraordinary arrangement, NEET paper setters to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team housed at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, Leh Old Town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting, the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला आप सुन रहे हैं. 8:30 हुए हैं. लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस.
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के समीप संजौली में लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे. इसके बाद मशोबरा में नशा निवारण केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे. शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का शुभारंभ हो रहा है. इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पहली सांस्कृतिक संध्या पर आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. इस दौरान आज कवि सम्मेलन सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. स्टार नाइट में बॉलीवुड गायक शबाब साबरी अपनी प्रस्तुति देंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल एस्पायर टैलेंट हंट का पोस्टर जारी किया. यह टैलेंट हंट 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. इस प्रतियोगिता के माध्यम से एस्पायर संस्थान मेधावी विद्यार्थियों का सुपर 50 बैच चयनित करेगी. इसके अतिरिक्त संस्थान 15 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को निशुल्क कोचिंग प्रदान करेगा. उन्हें कहा कि कोचिंग का पूरा खर्च संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा तथा इन बच्चों को अध्ययन सामग्री भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है. एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी. एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने का आग्रह किया है. मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस वर्ष 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था. सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है. प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राजधानी शिमला एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है. जून के दूसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ ही शहर में समर टूरिस्ट सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है. वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है. जाम के चलते आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. पिछले एक महीने में शिमला शहर में 8 लाख वाहनों की एंट्री हुई है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है. और इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज हो रहा है, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है. इस संबंध में इतना ही. नमस्कार.

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हमको मोहब्बत करेगा।
0: FM

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला आपने ट्यून इन किया है। हवाएं शहर में घुली है किसी पहाड़ी की तान, सुना है आज परिंदे भी सुकून से गाते हैं। ये वो सुकून है जो मिलता नहीं बाजारों में, ये गीत तो सीधा रूह को छू के आते हैं। लीजिए पेश है लोक संगीत। शुरुआत कर रहे हैं विनय अवरोल की आवाज में एक लोक भजन के साथ।

FM शिमला 103.7 MHz पर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुन रहे हैं लोक संगीत। हेमंत शर्मा और नीरज शर्मा की आवाजों में लीजिए पेश है अगला लोकगीत।

0: विनय अवरोल, हेमंत शर्मा, नीरज शर्मा और हेतराम कैंथा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये पहाड़ी लोकगीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर आप बने हुए हैं हमारे साथ और अब वक्त है कार्यक्रम कानून की बात का। विषय है नालसा एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016। आप इस विषय पर सुनेंगे श्री कुलदीप शर्मा, न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर से भेंट अनुज कुमार की। लीजिए पेश है।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं माननीय न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर के सचिव श्री कुलदीप शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है माननीय न्यायाधीश महोदय आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद अनुज जी।
1: जी श्रोताओं, आज का हमारा विषय है नालसा एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016। कुलदीप जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि योजना की पृष्ठभूमि क्या है।
2: अनुज जी, एसिड अटैक एक ऐसा क्रूर अपराध है जो पीड़ितों को न केवल शारीरिक रूप से विकृत करता है बल्कि समाज में उनके अस्तित्व और आर्थिक स्वतंत्रता को भी गहरी चोट पहुंचाता है। पहले यह देखा जाता था कि ऐसे मामलों में पीड़ित को तुरंत उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलती थी या फिर आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव के कारण वे कोर्ट कचहरी में न्याय से वंचित रह जाते थे और चक्कर लगाते रहते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा निर्देशों के बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा बोलते हैं, ने वर्ष 2016 में इस विशेष योजना को तैयार किया। इसका मूल दर्शन यह है कि राज्य का यह संवैधानिक और कानूनी कर्तव्य है कि वे ऐसे पीड़ितों को तत्काल मुफ्त कानूनी सहायता, तत्काल और पूर्ण चिकित्सा उपचार, गरिमामयी मुआवजा और समाज में सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करे। यह योजना न्याय को केवल अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रखती बल्कि पीड़ित के अस्पताल के बेड से लेकर समाज में दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने तक उसका हाथ थामती है।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि ये योजना एक संबल प्रदान करती है उस पीड़ित को, उस व्यक्ति को जिसको उस वक्त बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। इसी में आगे बात करें आपसे तो पीड़ित को जो तुरंत मिलने वाली कानूनी और आर्थिक राहत है, क्या इसके लिए बड़ी लंबी कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है या कितने समय बाद ये मिल जाती है?
2: इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की लाल फीताशाही या कागजी कार्रवाई को इलाज और न्याय की राह में बाधा बनने नहीं दिया जाता।
1: जी
2: जैसे ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पुलिस, अस्पताल या पीड़ित के रिश्तेदारों या अन्य किसी भी माध्यम से घटना की सूचना मिलती है, हमारा तंत्र जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए सक्रिय हो जाता है। और इसके बाद जो है तीन स्तरों पे मुख्यतः काम किया जाता है। सबसे पहला होता है वो है विधिक सहायता। पीड़ित व्यक्ति को बिना किसी आय सीमा की शर्त के पूरी तरह से मुफ्त

0: एक वरिष्ठ और अनुभवी कानूनी सहायता के लिए वकील आवंटित किया जाता है। यह वकील पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने से लेकर माननीय अदालत में अंतिम फैसले तक पूरी पैरवी निःशुल्क करता है। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है इंटरिम कॉम्पनसेशन, त्वरित अंतरिम मुआवजा जिसे बोलते हैं। तो कानूनी प्रावधानों और संशोधित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत जो एसिड अटैक पीड़ित होते हैं, इनकी चोट की गंभीरता को और इनके चेहरे के विकृतिकरण के आधार पर जो न्यूनतम मुआवजा है वो 3 लाख से 7 लाख तक का निर्धारित है। इसमें इस नालसाई योजना का सबसे कड़ा और महत्वपूर्ण नियम यह है कि घटना सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर कम से कम 1 लाख रुपये का इंटरिम जो मुआवजा होता है वो पीड़ित को दिया जाता है, ताकि वो शुरुआती और सबसे नाजुक दौर में पैसों की कमी के कारण उसका इलाज जो है प्रभावित ना हो, और जो शेष राशि होती है उसका भुगतान जो है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 2 महीनों के अंदर सुनिश्चित किया जाता है। जो तीसरा कार्य है वो यह है कि निःशुल्क और अनिवार्य इलाज। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देश हैं कि देश का कोई भी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या निजी, एसिड अटैक पीड़ित को इलाज देने से इनकार नहीं कर सकता है। अस्पताल को अनिवार्य रूप से तत्काल प्राथमिक उपचार और उसके बाद सभी प्रकार की रिकंस्ट्रक्टिव या प्लास्टिक सर्जरी और दवाइयां पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध करवानी होती हैं लोगों को।
1: जी कुलदीप जी, आपने अस्पतालों का यहाँ जिक्र किया। सरकारी अस्पतालों में तो ये चीज़ें अक्सर निशुल्क ही होती हैं, लेकिन आपने निजी अस्पतालों की भी बात करी, तो क्या निजी अस्पतालों में पीड़ित का निशुल्क इलाज किया जाता है? अगर इनकार करता है कोई इलाज करने से तो क्या इसमें किया जा सकता है?
0: अनुज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को पूरी कानूनी स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ कि निजी अस्पतालों के लिए भी यह सख्त विधिक बाध्यता है, और यदि कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ित का तुरंत और मुफ्त इलाज करने से मना करता है तो यह कानूनन एक गंभीर अपराध है, और इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है। यदि ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो पीड़ित परिवार का सदस्य या कोई भी जागरूक नागरिक हमारे राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1500 पर संपर्क कर सकता है, या सीधे हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर में कार्यालय में सूचना दे सकता है। हम बिना 1 मिनट गवाए इस मामले में कानूनी हस्तक्षेप करते हैं और तुरंत इलाज शुरू करवाना सुनिश्चित करते हैं।
1: जी, ये अच्छी बात है कि इसमें कोई देरी नहीं करते और तुरंत जो इलाज है वो किया जाता है। माननीय न्यायाधीश महोदय, इसमें देखिए शारीरिक कष्ट या शारीरिक दुष्प्रभाव तो होते ही हैं, एक पीड़ित की मानसिक स्थिति को भी बड़ा असर पड़ता है, तो क्या मानसिक स्थिति को संभालने के लिए भी इस योजना में कुछ खास है?
0: जी, नालसा की ये जो योजना है ये केवल आर्थिक या चिकित्सीय मदद तक सीमित नहीं है, यह पीड़ित की निजता, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी तरह संवेदनशील है। इसके तहत कई सुरक्षात्मक कदम उठाए जाते हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 या जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दर्ज किया जाता है या फिर जब उसकी कोर्ट में गवाही होती है तो विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक स्पोर्ट पर्सन या महिला सुरक्षा अधिकारी या फिर एक काउंसलर हमेशा उनके साथ मानसिक संबल के लिए मौजूद रहता है। इसके अलावा विधिक प्रावधानों के अनुसार पीड़ित की पहचान, फोटो या और उसके पते को मीडिया या सार्वजनिक डोमेन में पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है।
1: जी,
0: अदालती कार्रवाई के दौरान भी ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो पीड़ित है और आरोपी है वो सीधे संपर्क में ना आए, वो आमने सामने ना आए, इसलिए इन कैमरा सुनवाई की व्यवस्था की जाती है इसमें। इसके अलावा हमारा प्राधिकरण जो है पुलिस विभाग से निरंतर समन्वय बना के रखता है और सुनिश्चित करता है कि चार्जशीट जो है वो सही समय पर दाखिल हो, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर हो, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कानून के तहत कठोरतम सजा मिल सके।
1: जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा विषय संबंधित जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: जी, यद्यपि पिछले कुछ सालों में हमारे जिले में एसिड अटैक का कोई भी मामला नहीं हुआ है, फिर भी हमारा ये निरंतर और निष्ठापूर्वक प्रयास रहता है कि कानून केवल किताबों या अदालतों की फाइलों तक सीमित ना रहे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए हम नियमित रूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करते रहते हैं, विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं, महिलाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए।
1: जी, ये बहुत अच्छे प्रयास हैं और इस तरह के प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय,

0: पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं इसमें?
1: अनुजी, चिकित्सा विज्ञान से शारीरिक घाव तो भर जाते हैं, लेकिन समाज का सामना करने का जो मानसिक संकोच और डर होता है, उसे दूर करना पुनर्वास होता है। तो कानूनी संशोधनों के तहत एसिड अटैक से उत्पन्न हुई शारीरिक या चेहरे की क्षति को जो है बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करवाने में मदद करवाता है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, वजीफों और सरकारी नौकरियों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिल सके। हम विभिन्न सरकारी विभागों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से पीड़ितों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, वित्तीय साक्षरता, सिलाई कढ़ाई या अन्य कोई हुनर प्राप्त करने में भी मदद करते हैं।
0: जी
1: हमारा अंतिम उद्देश्य यह होता है कि समाज उन्हें केवल एक बेबस पीड़िता के रूप में ना देखे, बल्कि वह एक सशक्त सर्वाइवर बनकर गर्मा के साथ समाज की मुख्य धारा में लौट जाएं।
0: दीप जी, दया दृष्टि के बजाय उनको एक सर्वाइवर के रूप में देखना चाहिए, एक फाइटर के रूप में देखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले हो ही ना कुलदीप जी, तो तेजाब की जो खुलेआम और अवैध बिक्री होती है, उसकी रोकथाम हेतु क्या कुछ खास है?
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, रोकथाम ही सबसे अचूक उपाय होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश देकर के ये जो तेजाब की काउंटर पे सेल होती है, खुली खुदरा बिक्री जिसे बोलते हैं, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को तब तक तेजाब या एसिड नहीं बेच सकता जब तक कि वह ग्राहक का सरकार के द्वारा कोई जारी किया हुआ पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड ना देख ले और उसका पूरा विवरण, नाम, पता, मात्रा एक विशेष रजिस्टर में ना दर्ज कर ले। इसके जो अतिरिक्त खरीदार को जो एक लिखित में घोषणा पत्र देना होता है कि वह किस विशिष्ट और वैध कार्य के लिए जो है इसको खरीद रहा है।
0: जी
1: सबसे महत्वपूर्ण नियम ये भी है इसमें कि 18 वर्ष से कम के किसी भी नाबालिग को तेजाब बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय है। सभी थोक और ये जो खुदरा विक्रेता होते हैं, इनको अपने स्टॉक की घोषणा जो होती है स्थानीय सब डिविजनों में संबंधित SDM के पास नियमित रूप से करवानी होती है। अब अगर कोई भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ साथ उसका लाइसेंस जो है उसको भी निरस्त कर दिया जाता है, और इसके अलावा उसके ऊपर कानूनी मुकदमा भी चलाने का प्रावधान है। सभी व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील करूंगा कि वो इस नियम का पूरी कड़ाई और सामाजिक जिम्मेवारी के साथ पालन करें।
0: महोदय, जैसे ये तो बात करी हमने एसिड की, इसके अलावा कई अलग ज्वलनशील रसायन भी होते हैं या कोई पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हमला किया जाता है, तो क्या जो पीड़ित है वो मुआवजे के हकदार होंगे?
1: जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कानून के तहत जो एसिड या कोरोसिव सब्सटेंस है, इसकी परिभाषा जो है बहुत व्यापक है।
0: जी
1: इसमें हर वह रासायनिक पदार्थ शामिल है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर जलन, घाव या शारीरिक विकृति पैदा करने की क्षमता रखता है। इसलिए चाहे हमला सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ हो या किसी अन्य ज्वलनशील केमिकल या अत्यधिक तीव्र तेजाब से, पीड़ित को इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली मुफ्त विधिक सहायता, 3 लाख से 7 लाख तक का मुआवजा,
0: जी
1: 15 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए की अंतरिम राहत और निशुल्क इलाज के सभी अधिकार जो हैं पूरी तरह समान रूप से प्राप्त होते हैं। कानून तरल पदार्थ के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करता है, वह कृत्य की क्रूरता को देखता है।
0: जी दीप जी, अब इस कार्यक्रम में, क्योंकि समय भी हो चला है, आप जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश का कानून आपकी सुरक्षा, सहायता और न्याय के लिए सदैव पूरी सजगता के साथ तत्पर है। यदि कभी भी आपके आसपास कोई भी अमानवीय या अप्रिय घटना घटती है तो डरे नहीं, मूक दर्शक बिल्कुल ना बने, तुरंत आगे आएं, कानून का सहयोग करें,
0: जी
1: स्थानीय पुलिस को सूचित करें और हमारे राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1500 पर या सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपका एक त्वरित और सही कदम किसी पीड़ित की जिंदगी को बिखरने से बचा सकता है और उसे सही समय पर न्याय दिला सकता है। आइए हम सब मिलकर ऐसे संवेदनशील, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करें जहां हर एक नागरिक, विशेष तौर पे हमारी महिलाएं और बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त महसूस करें।
0: माननीय न्यायाधीश महोदय, आपने बहुत ही अच्छी विषय से संबंधित जानकारी दी, अच्छा संदेश दिया कि महिलाओं और बेटियों को

0: पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त महसूस करवाना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे प्रगतिशील होकर बढ़ेगा। आकाशवाणी हमीरपुर को आज आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात में। श्री कुलदीप शर्मा, न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर से अनुज कुमार की भेंटवार्ता। विषय था नालसा एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016। श्रोताओं, आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम म्यूजिक मेल में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपने पसंद का सॉन्ग सुन सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल करिएगा AIRFM शिमला म्यूजिक मेल @gmail.com पर।

0: और FM शिमला 103.7 MHz पर अब वक्त हो चुका है हमारे अगले कार्यक्रम का। 9 बज चुके हैं FM शिमला पर। अब आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। विषय है संस्कृत भाषा का महत्व। वार्ताकार मनमोहन प्रकाश। आइए सुनते हैं।
1: संस्कृत भाषा भारत देश यत्र समूले सती जनमानस पावने भव्य है भावोदायिनी शब्द संदोह प्रस्विनी सुर भारती। भारत देश में संस्कृत भाषा शोभित होती है, जो मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों की धारा बहाने वाली यह देववाणी है। ऐसी वाणी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है। संस्कृत भारत की अन्य भाषाओं का मूल स्रोत है। यह विश्व की एक विचित्र भाषा है। प्राचीन काल में यही भाषा भारत की राष्ट्रभाषा थी। सम्यक कृतम इति संस्कृतम, इस व्युत्पत्ति से इस भाषा का नाम और महत्व स्पष्ट होता है। इसी भाषा में ही विश्व प्रसिद्ध वेद लिखे गए हैं। यह भाषा सर्वथा दोष रहित, परिष्कृत और श्रेष्ठ भाषा है। इसी कारण यह देवभाषा सुर भारती, अमरावती, गीर्वाणवाणी आदि नाम से भी बोली जाती है। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है, भारतस्य द्वे प्रतिष्ठितम संस्कृत संस्कृति च तथा, अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। हमें अवश्य ही संस्कृत पढ़नी चाहिए और अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए। संस्कृत भाषा ही हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति, माता पिता और बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अथर्ववेद में वर्णित एक बहुत ही सुंदर श्लोक में कहा गया है, अनुव्रतः पितु पित्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्यम एव धूमतिम वाचम वदतु शांति वाम माम भ्राता भ्रातरम दीक्षान मनः स्वसा अमुत स्वसा सम्यश्च सव्रतः भूत्वा वाचाम वदत भद्रयः, अर्थात पुत्र को पितृव्रत और माता की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पत्नी को पति से मृदु एवं मधुर वाणी में ही बोलना चाहिए। भाई से भाई को तथा बहन को बहन से विद्वेष नहीं करना चाहिए। परस्पर प्रेम रखकर और समान व्रत धारण करके कल्याणकारी वाणी से बोलना चाहिए। यही वेद का आधार है, यही संस्कृत का सार है। संस्कृत भाषा जीवन में संस्कृति, ज्ञान और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यही देववाणी है, जिसकी विशेषता है वैज्ञानिक व्याकरण। सभी भाषाओं की जननी होना कंप्यूटर के लिए उपयुक्तता, मानसिक एकाग्रता और स्वास्थ्य लाभ जैसे तनाव कम करना, जिससे जीवन में आध्यात्मिक गहराई और आधुनिक

के साथ जुड़ाव आता है। जीवन में संस्कृत की अनेकों विशेषताएं हैं, जैसे मूल भाषा, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे सभी प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में हैं, जो हमारी संस्कृति व दर्शन की जड़ हैं। धार्मिक ग्रंथ, यह धर्म दर्शन व परंपराओं को गहराई से समझने का माध्यम भी है। शारीरिक लाभ, इसके उच्चारण से जीभ व मुंह की सभी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे कपालभाति प्राणायाम जैसा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्कृत भाषा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व कृत्रिम बुद्धिमता AI के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति और ज्ञान का आधार है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का मार्ग दिखाता है और विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, गणित जैसे क्षेत्रों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह भारतीय भाषाओं की जननी है और विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। संस्कृत भाषा मधुर व सब प्रकार के दोषों से रहित अति सुंदर, पवित्र और वैज्ञानिक भाषा है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि सभी भारतीय संस्कृति के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो ग्रंथ मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए भी साधक होते हैं। उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, भगवत गीता, पुराण आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। संस्कृत भारतीय संस्कृति का सुंदर शरीर माना गया है। यह भाषा वैदिक भाषा से निकली हुई है। संस्कृत भाषा हम सभी को ज्ञान व विज्ञान उपलब्ध करवाने वाली होती है। महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, दयावान सर्वभूतेषु हिते रक्तो अनासूयकः सत्यवादी मृदु दान्तः प्रजानाम रक्षणे रतः चरे धर्मम त्याज अधर्मः पितृन देवांच पूजय प्रमादात यत कृतम ते अभूत सम्यक दानेन तत्जयः अलम ते मान आश्रित्यम सत्तम परवान भव। इसका अर्थ है, हम सभी प्राणियों पर दया करें, हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सबका हित साधन करने में हमेशा लगे रहना चाहिए, किसी में गुण दोष नहीं निकालना चाहिए, सदा सत्य भाषण करो, सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो, प्रजा की रक्षा में हमेशा तत्पर रहो, धर्म का आचरण व अधर्म का त्याग करो, देवताओं और पितरों का हमेशा पूजन करो। मैं सबका स्वामी हूँ ऐसे अहंकारों को कभी भी पास न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो, यही संस्कृत भाषा का ज्ञान व विज्ञान है। अतः जिस मनुष्य ने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, अथवा यूं ही कहिए कि जिसने भारतीय संस्कृति के मूलभूत वेद आदि सत्य शास्त्रों के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है, वह भारतीय भारतवासी कहलाने का पूर्ण अधिकारी नहीं है। संस्कृत में भर्तृहरि ने सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, यथा खनिन खनित्रेन नरो वार्यादि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषा अधि गच्छति। अर्थात जिस प्रकार से एक व्यक्ति फावड़े से खोद खोद करके, कुदाल से खोद खोद करके पानी को प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार से जो गुरु की शरण में जाता है, या यूं कहें कि गुरु की पूजा करता है, गुरु के कहे अनुसार चलता है, वह जीवन में अवश्य ही आगे बढ़ता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रस्य आद्य भवन्ति अपेयः। अर्थात अगर मनुष्य में गुण है, गुणवान व्यक्ति ही सर्वत्र पूजे जाते हैं, निर्गुण व्यक्ति के पास अगर दोष आ जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से बहता हुआ जल पीने योग्य होता है, जब वह जल समुद्र में जा मिलता है तो वो अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। यदि संतिम गुणाम पुंसाम विकसयन्ते ते स्वयं नहीं कस्तूरी

कामोदः शब्देन विभाव्यते। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से मनुष्य में अगर गुण होते हैं तो वो स्वयं प्रदर्शित होते हैं, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार से वन का मृग आपने देखा है कि वो वन वन में घूमता रहता है सुगंध के लिए, मगर उसे पता नहीं कि खुशबू मेरे ही कंठ में है। तो संक्षेप में, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का आधार, वैज्ञानिक सोच का प्रतीक और स्वास्थ्य शांति का मार्गदर्शक है, जो व्यक्ति को अतीत से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार करता है। हम भारतीय हैं, हमें अपने गौरवशाली साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, तभी आत्म उत्थान संभव है। यह भाषा भारतीय संस्कृति की वो अक्षय निधि है जिसने सदियों से ज्ञान, धर्म और साहित्य को संजोया है। अतः यह भाषा हमारी अमूल्य विरासत है। संस्कृत भाषा का अध्ययन और प्रचार प्रसार करके हमें न केवल अपने प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करते हैं बल्कि एक सुसंस्कृत, अनुशासित और ज्ञानवान समाज का निर्माण करते हैं। यह भाषा हमें अपनी पहचान देती है और भविष्य का निर्माण भी यही भाषा करती है। इसलिए संस्कृत को एक विषय न मानकर उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि यह भाषा सदा जीवित रहे और विश्व कल्याण में अपना योगदान देती रहे। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सब इस महान विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। हमें इस भाषा को अपनी विरासत के रूप में समझना और सहेजना चाहिए। इसका सार एक श्लोक में निहित है, यस्मात् साक्षात् कृतं ज्ञानं यस्मात् सर्वं प्रवर्तते सा भाषा संस्कृत नामः साक्षात् ज्ञानस्य कारणम्। जिससे ज्ञान का साक्षात अनुभव होता है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, वह संस्कृत नाम की भाषा है जो स्वयं के ज्ञान का कारण है। संस्कृत भाषा प्राचीन ज्ञान का आधुनिक पीढ़ी से जोड़ती है और देश के गौरव तथा आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती है, जिससे भाषा की विविधता के बावजूद लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ता है। यह भाषा न केवल भारतीय भाषा की जननी है बल्कि वैज्ञानिकता और दार्शनिक गहराई के कारण संचार का उत्कृष्ट माध्यम भी है, जिससे राष्ट्रीय पहचान मजबूत होती है। संस्कृत भाषा एक ऐसी साझा कड़ी है जो भारत के विभिन्न भाषाई क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता व अखंडता मजबूत होती है। कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुम्बकम्। अर्थात यह अपना है, यह पराया है। ऐसी भावना कमजोर दिल वालों की होती है। जिसका हृदय उदार हो, विशालकाय हो, उसके लिए तो संपूर्ण प्राणी उसका परिवार होते हैं। यह भाषा के प्रति रुचि जगाती है और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ती है। यह शांत, स्पष्ट और व्यवस्थित संचार का माध्यम है जो मन की बात जैसे कार्यक्रम के लिए उपयुक्त है। संस्कृत भाषा के महत्व पर कई शिक्षाप्रद श्लोक भी हैं जो ज्ञान, परिश्रम व जीवन के सार को बताते हैं। जैसे आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु ना अस्ति उद्यम समबंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अर्थात आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस रूपी इस राक्षस को त्याग देते हैं वह व्यक्ति सुखी होता है। इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवुमनांसि जानन्ताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे ईश्वर, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी अच्छा देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने।

0: हम परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, सभी एक दूसरे की मन की बात को समझें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु हिमाचल प्रदेश।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला पर अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। विषय था संस्कृत भाषा का महत्व, वार्ताकार मनमोहन प्रकाश से।
2: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

0: सुबह हो या शाम आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: जी हाँ, आप बने हुए हैं हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। आइए अब आपको बताते हैं आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम सुरबेला में शिव कुमार शर्मा से सुनेंगे संतूर वादन राग तोड़ी। रिमझिम सुनिएगा 10:00 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुबह 11:30 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनते हैं 1:10 पर। सुनहरी किरणें आप सुनेंगे 2:00।

शाम 4:20 से सुनिएगा हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम, जिसमें 4:20 पर आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम, 4:50 पर मंडियाली, पंगवाली कार्यक्रम 5:20 पर, 6:06 पर महासवी और 6:35 पर कुल्लूवी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा। रात 8:00 धारावी गीत, 8:30 पर बंसीलाल से सुनिएगा सुगम संगीत। रात 9:00 गजलें सुनेंगे गुलदस्ता में, 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से पब्लिक स्पीक। 10:00 शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित जसराज का गायन राग दरबारी कान्हड़ा। 10:30 पर कार्यक्रम सुरबहार।

तो ये कार्यक्रम आज आप आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर सुन सकते हैं। ये है FM शिमला 103.7 MHz पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र फिर रिले करेंगे। साथ ही FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मशोबरा में नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा शुरू। 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व हिमाचली कलाकार मचाएंगे धमाल। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ने से पर्यटन व्यवसाय खुश। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन दी जाएगी। उन्होंने निगम प्रबंधन को अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के निकट संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इस स्टेडियम में रसोईघर, चेंजिंग रूम, शौचालय व ओपन हॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री का बाद में मशोबरा में निर्मित नवजीवन, नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ये केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा समर्थित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर सभी नव निर्वाचित सदस्यों ने क्षेत्र के विकास व जन कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प

0: व्यक्त किया। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन व जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के समीरपुर, बगवाड़ा व दाड़ी सहित अन्य स्थानों पर विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जबकि उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों की भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, डलहौजी, मनाली व खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे शिमला जिला संवाददाता ने बताया कि शिमला में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
1: वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है, बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। जाम के चलते आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पिछले एक महीने में शिमला शहर में 8 लाख वाहनों की एंट्री हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटलों में लगभग 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर शिमला की ओर आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी, तारा देवी, टूटीकंडी बाईपास और ढली जैसे प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: उधर कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता के अनुसार सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है तथा आजकल यहां मौसम भी सुहाना बना हुआ है। पर्यटक यहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं। शाम के समय मनाली के माल रोड में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से मनाली में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है तथा स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: सिरमौर जिले में किसान बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिले के 2200 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 12,000 किसान प्राकृतिक खेती से उगाई जा रही फसलों से अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
3: जिला सिरमौर में मौजूदा समय में करीब 2200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें किसान गेहूं, मक्की, धान, हल्दी और अदरक का मुख्य रूप से उत्पादन कर रहे हैं। जिला में करीब 12,000 ऐसे किसान हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से उगाए जा रहे उत्पादों के भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहीं कृषि विभाग इन किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही लगातार प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 व 10 जून को ऊना

0: बिलासपुर व सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला व पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, मंत्री विधायकों मुख्य सचिव ACS और उपायुक्तों को अगले माह से मिलेगा पूरा वेतन। इसी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है, मुख्यमंत्री ने वापिस लिया 30% वेतन स्थगन का फैसला। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल का पहला सरकारी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा केंद्र चयन आयोग हमीरपुर में तैयार। मुख्यमंत्री के हवाले से दिव्य हिमाचल लिखता है, HRTC पेंशनरों को हर माह समय पर मिलेगी पेंशन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, HRTC पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मशोबरा में नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा शुरू। 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व हिमाचली कलाकार मचाएंगे धमाल। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ने से पर्यटन व्यवसायी खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
1: पर आप सुन रहे हैं FM शिमला और ये वक्त है कार्यक्रम कुदरत के रंग का।

नीले गगन की चादर ओढ़े, धरा हरी मखमली बिछाए, सूरज की किरणें जब बिखरी चारों ओर ये रंग सजाए। बादल है श्वेत रुई से, उड़ते रंगों के खेल हैं ये सारे। धूप छाओं की लुका छुपी में मौसम कितने रंग बदलता है, पतझड़ हो या सावन की फुहार, कुदरत का कैनवस है छलकता। इंद्रधनुष ने रंग बिखेरे, फूलों पर तितलियां इतराई, हर मौसम पर पहर में छुपी है कुदरत की कोई ना कोई गहराई। कुदरत के रंग कार्यक्रम में हमारे सभी लिसनर्स का स्वागत है।

कुदरत किरण एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। कुदरत किरण में आज सैर करेंगे कसौली की, हिमाचल का एक बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन, जहां आप प्रकृति का आनंद सुकून से ले सकते हैं। गिलबेट नेचर ट्रेल ये कसौली की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है। ये 1.5 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता है जो पाइन ट्रीज और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की हरियाली और पक्षियों की चहचहाट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसी है, यकीन मानिए।

अब बात करते हैं कसौली के मंकी पॉइंट की। ये कसौली का सबसे ऊंचा स्थान है जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर स्थित है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ

एंट्री के लिए आधार कार्ड या फिर कोई सरकारी पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लाते समय यहाँ रुके थे। यहाँ से वादियों का नज़ारा अद्भुत नजर आता है। शाम के समय डूबते सूरज का शानदार नज़ारा देखना है अगर आपको, तो आप पहुंच सकते हैं कसौली के सनसेट पॉइंट। ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध भी है। पहाड़ों के पीछे छिपते सूरज और आसमान के बदलते रंग

शाम के समय डूबते सूरज का शानदार नज़ारा देखना है अगर आपको, तो आप पहुंच सकते हैं कसौली के सनसेट पॉइंट। ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध भी है। पहाड़ों के पीछे छिपते सूरज और आसमान के बदलते रंग यहाँ से बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आज आपको सैर करवा रहे हैं कसौली की 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

कसौली के माल रोड के पास स्थित है ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च, जो ब्रिटिश इरा में बना था। इसका गौथिक आर्किटेक्चर और सुंदर कांच की खिड़कियां आपको बहुत आकर्षित करेंगी। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब बात करते हैं शॉपिंग और फूड की। कसौली की हेरिटेज मार्केट में आप पैदल घूमते हुए स्थानीय हस्तशिल्प, वुलन क्लोथ्स और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। साथ ही आपको बहुत से लोकल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां आप बन, समोसा, बन गुलाब जामुन जैसे स्ट्रीट फूड्स का आनंद ले सकते हैं। कसौली दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला जैसे शहरों से नेशनल हाईवे NH5 से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से कसौली लगभग 60 किलोमीटर दूर है। टैक्सी या बस से आप आराम से यहां पहुंच सकते हैं। दिल्ली से ये लगभग 290 किलोमीटर दूर है। शिमला आने वाली किसी भी बस में आप धर्मपुर स्टॉपेज पर उतरकर आप 12 किलोमीटर दूर बसे कसौली में आराम से पहुँच सकते हैं।

और यहाँ काफ़ी सारे बंदर हैं, तो अपने हाथों में खाने पीने की चीज़ें, चश्मा आदि या सब कुछ ध्यान से रखें। ये एक वॉक इन फ्रेंडली जगह है, तो शूज़ आपके कंफर्टेबल होने बहुत ज़रूरी हैं। स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज़ या फ्लैट शूज़ आप प्रेफर करें, ताकि आपको यहाँ आने पर कोई दिक्कत ना हो, और थोड़ा सा कैश ज़रूर अपने साथ रखें।

तो इसी गीत के साथ कुदरत के रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आज भारती के संग, और आज हमने सैर की कसौली की।

0: कुदरत के रंग, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। और अब वक्त है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का, लीजिए पेश है।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंदर गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों के भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के समीप संजौली में लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मशोबरा में नशा निवारण केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस देश के विभिन्न भूभागों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार सुनाता है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल्याणी 9 व 10 जून को ऊना, बिलासपुर और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। शिमला के निकट जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय लोहारपुर में 4 वर्ष

0: ललित कला स्नातक बीएफए डिग्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून तय की गई है। इस संग में बस इतना ही, नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन, रात 9:30 पर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और आपको हम बता दें कि अब हम सुनेंगे ईमेल बेस्ड रिक्वेस्ट प्रोग्राम म्यूजिक मेल 103.7 MHz FM शिमला पर।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और आप हमारे साथ फिल्म रिक्वेस्ट प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं जिसका नाम है म्यूज़िक मेल। और अगर कार्यक्रम में आप हमें कोई फरमाइश करना चाहते हैं, किसी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें मेल कीजिए AIRFM Shimla musicmail@gmail.com पर, और आपकी इन डिजिटल चिट्ठियों के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपकी पसंद का गाना आपको ज़रूर सुनवाएंगे। तो जब तक आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं, आपके मेल्स हम तक पहुंचते हैं, हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए ये सॉन्ग। फिल्म का नाम है मेरे सनम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, ओपी नैयर का संगीत और बोल लिखे हैं मजरूह ने। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपके लिए लीजिए पेश है

0: तो देखिए, आपकी फरमाइशें, आपकी ईमेल्स हम तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। पहला मेल हमारे पास आया है फिल्म गाइड के गीत के लिए, तेरे मेरे सपने, ये गाना सुनना चाहते हैं। भेजने वाले हैं संदीप, बनीता, मनदीप, सुगंधा, नीलम, समायरा, समरीन और समर्थ, ये हमें मेल कर रहे हैं बिलासपुर से। विपिन शर्मा विलेज शालाघाट तहसील अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन से हमें मेल कर रहे हैं, हमारी कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं इस गर्मी के मौसम में, ऐसा इन्होंने लिख कर भेजा है। और आप भी हमें मेल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, अपनी फरमाइश सुन सकते हैं AIRFM शिमला musicmail@gmail.com पर आप मेल कीजिए। 103.7 MHz FM शिमला पर जुड़ जाइए हमारे साथ, कार्यक्रम का नाम है म्यूजिक मेल।
1: मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती,

म्यूजिक मेल, ये कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं और अगला मेल हमारे पास आया है। धड़कन फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं। पटियाला कला दुर्ग से हमें मैसेज कर रहे हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। अगला मेल भी हमारे पास पंजाब से ही आया है। मिंटू टोमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने हमें मेल किया है। पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमें मेल कर रहे हैं। आप भी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी aarfmshimla@gmail.com पर। अभी धड़कन फिल्म का ये गीत हम सुन लेते हैं आपके साथ।

गैम्बलर, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, इस फिल्म के इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने। चौपाड़ी रोडू से तारा सिंह गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, जमेंटा गुंजेटा और एलआर गुंजेटा हमें मेल कर रहे हैं। राजकुमार, शीला, यामिनी, मनीष ये करसोग से हमें मेल कर रहे हैं। आप हमें अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए, ऐसा इन्होंने लिखकर भेजा है। ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून हमें मेल कर रही हैं और कह रहे हैं कि हमारे मेल को भी आप शामिल कर लें, तो हमने इनका मेल शामिल कर लिया।

और अब वक्त है इनकी फरमाइश को पूरा करने का। तो चलिए, इन्होंने चाहा था कि हम आप इनके लिए प्ले कर दें एक सॉन्ग जिस फिल्म से ये चाहते थे, गैम्बलर फिल्म का सॉन्ग ये चाह रहे थे। तो चलिए प्ले करते हैं गैम्बलर फिल्म का सॉन्ग, सुनते हैं हम मिलकर साथ ही गीत। और आप भी जुड़ सकते हैं अपनी डिजिटल चिट्ठी के माध्यम से, यानी कि ईमेल के माध्यम से हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला म्यूजिक मेल प्रोग्राम में। 11 बजे तक आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

AIRFM शिमला musicmail@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप हमें मेल करें, कार्यक्रम म्यूजिक मेल में हमारे साथ जुड़ें और सुनें अपनी पसंद के गीत। FM शिमला 103.7 MHz पर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। दीवाना, इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें या नहीं, ये गीत सुनना चाहते हैं खरगोन MP से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली, महाराष्ट्र से विकास, रेखा, अदिति, वैभव शिंदे हमें मेल कर रहे हैं, खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे ये हमें मेल कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश दीवाना फिल्म से, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें या नहीं।

आकाशवाणी की 90 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हमें भेजी हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब गाजीपुर यूपी से। साथ ही इन्होंने भेजी है हमें एक फरमाइश, फिल्म हसीना मान जाएगी से ये गीत सुनना चाहते हैं बेखुदी में सनम। भेजने वाले हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जी। हमें मुबारकबाद देने के लिए धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि इतने वर्षों से आपने हमारा साथ निभाया और यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्य साहू ये हमें मेल कर रहे हैं, और आप भी हमें मेल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है airfmshimla@gmail.com। 103.7 MHz FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मेल। लीजिए पेश है इनकी फरमाइश पर ये नगमा।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: म्यूजिक मेल, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 103.7 MHz FM शिमला पर। श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे पास मेल आया है। भेजने वाले हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका। मर्यादा फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, और ढोल सजना ढोल जानी गीत के बोल हैं। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमांश ये हमें मेल कर रहे हैं। मेल आया है अगला हमारे पास न्यू शिमला से। भेजने वाले हैं बलजीत, शांति, बॉबी। ये सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई भी नगमा। तो लीजिए आप सब और हम मिलकर सुनते हैं मर्यादा फिल्म से ये गीत।
5: तू भी आ जा के आ गई रुत।

म्यूजिक मेल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। आज संगीतकार दत्ताराम वाडेकर जी का स्मृति दिन है, 8 जून 2007। इन्हें हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि ये लिखकर भेजा है हमें अपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ये सुनना चाहते हैं जिंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं, गीत न जाने कहाँ तुम थे।

ही हैं ये भेजने वाले हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये नगमा।

हिमालय की गोद में इस फिल्म के गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है। भेजने वाले हैं राजकुमार, लीला, गौरव, बबलू, आशा, इशु, निशु शिमला से ये हमें मेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से प्रजानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश ये हमें मेल कर रहे हैं। गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी इनका भी मेल हमारे पास आया है। छत्तीसगढ़ से ये मेल कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई भी नगमा। तो हिमालय की गोद में इस फिल्म का गीत हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। आप भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पर बहुत कम समय बचा है। तो चलिए सुनते हैं 103.7 MHz FM शिमला पर म्यूजिक मेल प्रोग्राम में ये अगला गीत।

चुपके चुपके इस फिल्म के गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से हमें ये मेल कर रहे हैं। पंजाब फाजिलका से भूषण खेड़ा, विशाल, विशु, लाडी खेड़ा, शालिनी, दिवांशु, वानी, आरबी खेड़ा ये हमें मेल कर रहे हैं और कार्यक्रम की आखिरी ये फरमाइश है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।

0: और इसी गीत के साथ म्यूजिक मेल कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर,
1: मीडियम वेव और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के निकट संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इस स्टेडियम में रसोईघर, चेंजिंग रूम, शौचालय व ओपन हॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री का बाद में मशोबरा में निर्मित नवजीवन, नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ये केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा समर्थित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जन प्रतिनिधियों की भूमिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, डलहौजी, मनाली व खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे शिमला जिला संवाददाता ने बताया कि शिमला में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
1: वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है, बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। जाम के चलते आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पिछले एक महीने में शिमला शहर में 800,000 वाहनों की एंट्री हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटलों में लगभग 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर शिमला की ओर आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी, तारा देवी, टूटीकंडी बाईपास और ढली जैसे प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी हैं। इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: उधर कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता के अनुसार सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है तथा आजकल यहां मौसम भी सुहाना बना हुआ है। पर्यटक यहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं। शाम के समय मनाली के माल रोड में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से मनाली में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है तथा स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी इससे परेशान

0: परेशानी झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 व 10 जून को ऊना, बिलासपुर व सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: ये थे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
4: हर खुशी अब लगे
3: मस्त, चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। और FM शिमला पर अब शुरू होने जा रहा है मनोरंजन का एक नया सफर, जिसमें अभी से लेकर शाम 4 बजे तक हम और आप रहेंगे एक साथ। और रोज ही की तरह आज भी हमारे पास हैं आपके लिए बहुत सारे एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के इस हसीन सफर की हमारे उस खास प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं गुजरे जमाने के कुछ ऐसे बेशकीमती और नायाब नगमे जो कि आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। ये वो पुराने गीत हैं जो आज भी नए लगते हैं। जी हाँ, उतने ही नए, उतने ही दिलकश और उतने ही तरोताज़ा। आज के दौर में भी इन गीतों का चाम पहले की तरह ही बरकरार है और आपकी और हमारी न जाने कितनी ही यादें जुड़ी हैं इन गीतों के साथ, जो इन्हें सुनते ही फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं गुजरे ज़माने के उस दौर में, जहाँ से हमने आपके लिए चुने हैं ये दिलकश नजराने। जी हाँ, FM शिमला पर ये वक्त है प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से का। और पुराने फिल्मी गीतों के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आराधना फिल्म के इस गीत के साथ, जिसमें आप सुनेंगे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है ST बर्मन ने। और FM शिमला पर आज का ये हसीन सफर आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल के साथ। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ आपने सुनी आराधना फिल्म के इस गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरे हुजूर फिल्म का गीत। इस गीत में आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना

0: रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में लीजिए अब सुनिए गीत फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत को लिखा है हसर जयपुरी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरे हमदम मेरे दोस्त। जी हाँ, प्रोग्राम के आखिर में ये इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है मजरू ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पुराने फिल्मी गीतों से सजे इस प्रोग्राम में इस वक्त आप हैं हमारे साथ FM शिमला पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ग्यारह बजकर 30 मिनट हो गए हैं और FM शिमला पर अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। तो चलिए आनंद उठाते हैं कुछ पहाड़ी लोकगीतों का। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको हम सुनवा रहे हैं सीताराम पथिक और हीरालाल भारद्वाज की आवाज़ में ये लोकगीत।

सीताराम पथिक और हीरालाल भारद्वाज की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आइए अब सुनते हैं अनीता देवी की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी लोक गीतों पर आधारित पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में अब अगला लोकगीत सुनते हैं अनिल कुमार की आवाज़ में।

पहाड़ी लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर। आपको बता दें कि मंगलवार यानी कि 9 जून 2026 को सुबह 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है वहम की बीमारी यानी कि ओसीडी एवं मानसिक स्वास्थ्य। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी कि 9 जून 2026 को सुबह 8:45 से लेकर 9:15 के दौरान हमारे फ़ोन नंबर्स 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियोज़ में उपस्थित रहेंगे।

पहाड़ी लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को है, आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जाँच से म्यांमा से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बहनों, स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला सम्मेलन में। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रंजू, और मेरे साथ हैं
1: मीनाक्षी वर्मा।
0: हम दोनों का आप सभी को प्यार भरा
1: नमस्कार। बहनों, आज का आधुनिक युग जहाँ एक ओर विज्ञान और प्रगति के नए आयाम छू रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज में कई सामाजिक बुराइयाँ भी पैर पसार रही है।
0: जी बिल्कुल। और मीनाक्षी, बात करते हैं कि इन्हीं में से सबसे घातक और विनाशकारी जो बुराई है वो है नशे की लत।
1: जी,
0: नशा एक ऐसा धीमा जहर है बहनों, जो न केवल एक व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे हंसते खेलते परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी अंधकार में धकेल देता है।
1: जी, तो क्यों ना रंजू, आज हम अपनी बहनों से देश में चल रहे जो नशा मुक्ति अभियान है, इसी पर बात कर लें।
0: जी,
1: आज के इस दौर यानी समय में हमारी युवा पीढ़ी नशे के जाल में बड़ी तेज़ी से फंस रही है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी एक दूसरे को नशा मुक्ति की ओर प्रेरित करें, यानी नशे को छोड़ने और ना करने के लिए जागरूक करें।
0: जी बहनों, नशा मुक्ति का अर्थ है कि किसी भी तरह के नशीले और मादक पदार्थों के सेवन की आदत को हमेशा के लिए त्याग देना।
1: जी,
0: ये एक बहुआयामी या हम कह सकते हैं बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके व्यक्ति को विशेषज्ञ परामर्श, चिकित्सा और सही मार्गदर्शन के माध्यम से दोबारा एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने के योग्य बनाया जा सके।
1: जी, नशा किसी भी इंसान को चारों तरफ से बर्बाद कर देता है, यानी सबसे पहले तो वो उस व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।
0: जी,
1: नशे के सेवन से कैंसर, लीवर, हृदय जैसे कई रोग हो जाते हैं, साथ ही साथ मानसिक असंतुलन जैसी जो जानलेवा बीमारी है वो भी हो सकती है।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही देखिए, नशे की लत को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपनी जिंदगी भर की जो भी जमा पूंजी होती है उसे गंवा बैठता है और आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो जाता है।
1: जी, और इस बर्बादी यानी नशे की लत के जो बढ़ने के कारण हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि आजकल के जो युवा है वो गलत संगति में फंस रहे हैं, वो ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना रहे हैं या उनकी संगति कर रहे हैं जो पहले से ही नशा करते हैं।
0: जी बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि युवा जो हैं हमारे, वो पढ़ाई, करियर के दबाव या फिर व्यक्तिगत जीवन में असफलता के कारण भी मानसिक तनाव से कुछ समय की राहत पाने के लिए वो इस भ्रम में रहते हैं कि हमें नशा करके हमें इन जो भी हमारी जो मानसिक तनाव से हम जूझ रहे हैं उसका, अगर हम नशे का सहारा लें तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं।
1: जी, और रंजू, यहाँ तक ये भी देखा गया है ना कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि किसी दूसरे को देखते हैं कि वो नशा कर रहा है, और खुद को भी उनकी तरह बनाने के लिए या साबित करने के लिए कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो वो एक बार नशा कर लेते हैं, और जब वो एक बार कर लेते हैं तो बार बार उन्हें वो करने की आदत सी लगने लग जाती है, एक लत लग जाती
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल। उस नशे की गिरफ्त में वो पूरी तरह से जो है, ज़्यादातर आजकल जो हमारा युवा वर्ग है वो उस नशे की गिरफ्त में आ रहा है। बहनों, नशा जो है नाश की जड़ है, जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प केवल ऐसा नहीं कि सरकारी प्रयासों से ही, बल्कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदारी उठाकर ही इस समस्या से जो है हम इससे छुटकारा पा सकते हैं।
1: जी, हमें अपने समाज और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहना होगा।
0: जी,
1: एक नशा मुक्त समाज ही एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
0: जी बिल्कुल।

0: पुराने किस्से बहुत अनमोल होते हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: और आज जहाँ हम हैं, हमें जब भी पुरानी बातें याद आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे ही रेडियो के साथ हमारी जो बहुत पुरानी अनमोल यादें हैं वो आज तक हमें हमेशा याद रहती
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के डिजिटल युग में भी रेडियो हमारे लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सुलभ और सस्ता माध्यम है।
1: जी बिल्कुल मीनाक्षी। और खासकर दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर आपातकालीन स्थितियों में जहाँ बिजली या इंटरनेट नहीं होता, उस समय रेडियो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को आपस में जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण एक जो है भूमिका निभाता है।
0: जी, रेडियो के माध्यम से हमें पल पल की खबरें मिलती है, मौसम की जानकारी हमें पता चलती है,
1: जी
0: और सरकारी नीतियों जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा संबंधी जो भी कुछ भी जानकारियां हैं वो तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है, जो इसे आपातकाल में जीवन रक्षक बनाता है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, साथ ही निरक्षर और दृष्टिहीन लोगों के लिए ये ज्ञान का खजाना है। शैक्षिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों पर चर्चा करके सामाजिक बदलाव भी ये लाता है। और जहाँ मनोरंजन की बात हो तो रेडियो वहाँ पर भी अपनी अहम भूमिका निभाता है।
0: जी, संगीत हो, नाटक हो और खेल प्रसारण के जरिए ये लोगों का मनोरंजन भी करता है।
1: जी
0: साथ ही ये सस्ता और उन क्षेत्रों में भी पहुंचता है जहां पर बिजली या मोबाइल के सिग्नल नहीं होते, जिससे ये हर वर्ग के लिए सुलभ और सुविधाजनक हो जाता है।
1: जी बिल्कुल मीनाक्षी। और जैसे हमने पहले आपने बात की कि हम बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं, हम सबसे पहले जो सोशल मीडिया का माध्यम था वो सबसे ज़्यादा रेडियो ही था। तो मुझे
0: जी
1: बचपन की वो बात याद है कि जब अक्सर होता है ना कि बच्चे मम्मी पापा के साथ बैठे होते हैं तो
0: जी
1: परेशान कर रहे होते हैं, उनको काम करने नहीं देते, तो वैसे ही जब पेरेंट्स काम कर रहे होते थे तो मुझे मुझे वो बात याद है। तो मैं पापा को अगर परेशान कर रही होती थी तो वो कहते, जाओ रेडियो सुनो और रेडियो में क्या समाचार जो है चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है वो फिर मुझे बताओ। तो हम न्यूज़ एक लाइन सुनते थे और भागकर पापा के पास जाते थे कि ये ऐसा ऐसा फलानी जगह पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से यानी छोटी से बड़ी जो जानकारी है उससे वो आम जनमानस तक रेडियो को पहुंचाना उसका काम है।
0: जी और इसकी एक खास बात ये भी है कि रेडियो केवल आवाज़ पर ही आधारित होने के कारण
1: जी
0: श्रोताओं को सोचने और कल्पना शक्ति को बढ़ाने का एक मौका देती है,
1: जी
0: जो टीवी या इंटरनेट से थोड़ा अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी। और देखिए, ये अलग ही अनुभव है जो रेडियो सुनने को आज भी बेहद खास बनाता है। और देखो, ये खास और खास तब बनता है जब हम बहनों के दिल की बात इतनी दूर होते हुए भी उनकी पसंद के गीत उन्हें सुना देते हैं। तो चलिए सुनते हैं और बहनों को भी सुनवाते हैं एक और गीत।
0: जी,

0: बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परवरिश की। मीनाक्षी, अक्सर होता है कि जब भी माता पिता कुछ काम कर रहे होते हैं तो बच्चे उनके पास आकर पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और जब माता पिता बताते हैं कि हम फलां फलां काम कर रहे हैं तो बच्चे भी उस काम को करने में अपनी इच्छा जताते हैं कि हम भी आपके साथ ये काम करते हैं, या कहते हैं कि हम अपने माता पिता की सहायता करना चाहते हैं।
1: जी,
0: लेकिन हम में से 90% माता पिता का यही कहना होता है कि तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, जो तुम्हारा काम है वो करो। तो बच्चों को लगता है कि सच में क्या उस काम में उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा जो काम उनके माता पिता कर रहे हैं और उन्हें वो काम करने से रोक रहे हैं।
1: जी बिल्कुल रंजू, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के मन में उठने वाले इस तरह के प्रश्न माता पिता के दृष्टिकोण को बदलने की तरफ इशारा करते हैं।
0: जी,
1: माता पिता को सोचना है कि क्यों हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर थोपते हैं, उनकी रुचियों को क्यों महत्व नहीं देते।
0: जी,
1: ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भी काम कर रहे हैं उससे तकनीक या तरीके को हल्के फुल्के शब्दों में हम उन्हें बता दें
0: जी,
1: ताकि उनके स्तर पर वो उसे सोचें और जो उनकी सोचने की क्षमता है उसे भी बढ़ाएं।
0: जी बिल्कुल। और बच्चों को ज़रूरी नहीं कि किताबों से ही सिखाया जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि तुम पढ़ने का काम करो कि उससे ही सब कुछ सीखो।
1: जी,
0: तो ज़रूरी नहीं है कि किताबों से ही वो सब कुछ सीखे, बल्कि जब वो अपने रुचि के अनुसार काम करते हैं तो उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम उनकी रुचियों को उनकी ताकत बनाएं, और साथ ही बच्चा सीखते सीखते कोई गलती भी करे तो उसे टोकने या उस पर उसके काम में टिप्पणी करने की बजाय उसका सही मार्गदर्शन करें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ के सीखते हैं वो सिर्फ याद रहती है।
0: जी,
1: लेकिन अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से याद हो जाती है कि हम उसे कभी भूलते ही नहीं।
0: जी बिल्कुल।
1: हर

0: बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपी होती है। ऐसे में हर माता पिता और शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसकी उस प्रतिभा को खोजें और निखारें।
1: जी
0: जब एक बच्चे को उसकी पसंद के काम में सही दिशा मिलती है तो वो साधारण से असाधारण बन जाता है, यानी कि खास बन जाता है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, और बहनों से बात करते हैं कि बच्चों की रुचि को कैसे उनकी ताकत बनाया जाए। तो बहनों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चा खाली समय में क्या कर रहा है। चित्रकारी करना, खिलौने तोड़ना, जोड़ना, या कहानियाँ कहना, बुनना, अपने तरफ से बनाना, यानी उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से हमें ध्यान देना होगा। तभी तो पता चल पाएगा ना कि किस क्षेत्र में बच्चा रुचि दिखा रहा है।
0: जी बिल्कुल, सबसे ज़रूरी बात बच्चे पर कुछ भी करने के लिए किसी तरह का दबाव ना डालें।
1: जी
0: अपने इच्छाएं बच्चों पर ना थोपें।
1: बिल्कुल,
0: उसे जो चुनना है चुनने दें, जो उसकी खुशी देता है, उसे ज़्यादा खुशी मिलती है
1: जी,
0: वो उसे करने दें। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे माता पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाते और ऐसे में उन पे दबाव बन जाता है
1: जी,
0: वो दबाव के चलते कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात कही मीनाक्षी आपने कि बच्चे को जो भी पसंद है उसे करने दें, बस उसे उसका निरीक्षण करते रहिए, एक तरह से ऑब्जर्वेशन करते रहिए, उसे उसकी रुचि के अनुसार समय, संसाधन और वो सभी अवसर दें ताकि वो अपनी कला और कौशल को और ज़्यादा निखार सके, और हो सके तो उसे उसकी रुचि के अनुसार ही और जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो हम बोलते हैं कक्षाएं भी, उसको आप ज्वाइन करवाएं ताकि वो अपने कला कौशल को और निखार सके।
0: जी, हर बच्चे में एक अनूठी प्रतिभा होती है। जब हम उसकी रुचि को पहचान कर उसे सही ट्रेनिंग दिलवाते हैं और अनुकूल वातावरण देते हैं तो वही रुचि उसकी सबसे बड़ी ताकत और भविष्य के लिए सफलता का आधार बन जाती है।
1: जी बिल्कुल बहनों, और बच्चा है तो शुरुआत में गलतियां तो करेगा ही, तो ऐसे में माता पिता अपना धैर्य खो बैठते हैं तो उसे डांटने भी लगते हैं। ऐसे में हमें अच्छे माता पिता और एक समझदार व्यक्तित्व की मिसाल जो है पेश करनी है, उसका हौसला बढ़ाना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रुचि को हुनर और ताकत बनने में समय लगता है, जो है रातों रात बदलाव की उम्मीद हमें बच्चों से नहीं रखनी चाहिए।
0: जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें भी धैर्य बनाए रखेंगी और अपने बच्चों की जो खूबियां हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उन्हें समझेंगी और उसमें उन्हें आगे बढ़ने देंगी।
1: जी बिल्कुल।

0: रंजू, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोगों को कि वो काफी सुस्त से दिखाई देते हैं,
1: जी
0: उनके चेहरे की चमक भी खो जाती है, तो संभावना है कि उन लोगों को एनीमिया नामक एक सामान्य खून की कमी जैसे विकार से वो पीड़ित हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ आपके रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं, या सिंपल भाषा में कहें तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है।
1: जी बिल्कुल मीनाक्षी, सही कहा आपने कि ये जो आपने लक्षण बताए तो ये कुछ हद तक एनीमिया से जो शिकार जो लोग होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं। और खून की कमी यानी एनीमिया, ये एक आजकल आम समस्या होती जा रही है। इसका रिश्ता जो है सबसे पहले पोषण से है।
0: जी
1: अगर आपका आहार सही है तो आप एनीमिया से लड़ सकती हैं। और एनीमिया ही नहीं, साथ ही और भी जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ और विकार हैं उनसे भी आप जो है लड़ सकती हैं अगर आप एनीमिक नहीं हैं।
0: जी और कुछ ऐसे फल हैं अगर हम उनका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हमें कभी भी खून की कमी नहीं होती।
1: जी
0: जैसे कि अनार, खून बढ़ाने के लिए अनार सबसे अच्छे फलों में से एक है। ये आयरन, विटामिन ए, सी और ई का एक अच्छा स्रोत है। इस फल में मौजूद एस्बॉटिक जो एसिड है वो रक्त को नियंत्रित करता है
1: जी
0: और शरीर में आयरन को भी बढ़ाता है।

0: जी बिल्कुल। और उसी के साथ अगर हम सेब की बात करें, और देखिए अब सेब का भी सीज़न शुरू ही होने वाला है, तो
1: जी
0: सेब में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये शरीर के अंदर आयरन के जो अवशोषण में मदद करता है और शरीर में आयरन के स्तर में बढ़ोतरी जो है हमारे बनाए रखता है। और साथ ही देखिए कहते हैं कि सेब का छिलका भी फाइबर से भरपूर होता है, तो इसलिए ये भी सलाह दी जाती है कि सेब को छिलके के साथ ही खाएँ।
1: जी, और आगे बात करते हैं आड़ू की, तो आड़ू भी विटामिन सी और आयरन से भरा होता है।
0: जी
1: जहाँ विटामिन सी आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है, वहीं ये लाल रक्त कोशिकाओं का जो दोहराव है उसे रोकता है।
0: जी
1: साथ ही आड़ू वजन घटाने, त्वचा को सुधारने और आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है।
0: जी बिल्कुल बहनों। और देखिए जैसे बात की मीनाक्षी ने आड़ू और आलू बुखारा, देखिए ये मौसमी फल हैं, आप जितना जी भर कर इनको खाइए और तंदुरुस्त रहिए। आलू बुखारा विटामिन सी और आयरन के साथ हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की एक कुंजी आप मान सकते हैं इसे। इसके साथ ही आलू बुखारा जो है मैग्नीशियम का एक समृद्ध भंडार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को हमारे शरीर में बढ़ाता है।
1: जी, और आगे बात करते हैं जामुन की। विटामिन सी और आयरन से भरपूर होने के कारण ये शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। ये रक्त को शुद्ध करने में भी काफ़ी मदद करता है। साथ ही लौह तत्व अधिक होने के कारण पीलिया और एनीमिया से पीड़ित लोगों को जामुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए।
0: जी बहनों, तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा और मीनाक्षी के द्वारा जो आपको स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी दी गई है, आप उसे अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतों में ज़रूर शामिल करेंगी और स्वस्थ रहेंगी।
1: जी, और साथ ही बहनों, जब भी आप किसी फल का सेवन करें तो आप सबसे पहले उसे अच्छे तरीके से धो लें।
0: जी,
1: बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई तरीके के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया होता है, तो अगर अच्छे तरीके से उन्हें आप धोते हैं उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। और कुछ फल हैं जिन्हें छिलके के साथ खाना चाहिए, जैसे कि सेब है, तो आप उन्हें छिलके के साथ ही खाएं, जो आपके लिए वो अधिक फ़ायदेमंद साबित हो।
0: जी।

0: बहनों, आपसे बातें करते करते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मन तो नहीं करता कि आपसे अलविदा लें, लेकिन जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तो अपनी सखियों को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। एक बजने को है हिंदी व अंग्रेजी समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास

0: स्वास्थ्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who are left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life.

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, दोपहर के 1:10 हो गए हैं और हमारे साथ FM शिमला पर अब आप सुनेंगे मस्ती भरे कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिन्हें सुनकर आपका मूड जो है एकदम मस्ती से भर जाएगा। मन जो है आपका वो नाचने गाने और झूमने का करेगा, क्योंकि माय डियर लिसनर्स, आपके लिए FM शिमला पर अब हम लेकर आ गए हैं मस्ती भरा हमारा वो प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में नाचने गाने और झूमने के लिए, क्योंकि कुछ रॉकिंग म्यूजिकल नंबर्स हम प्ले करेंगे यहाँ पर आपके लिए। तो बस आपने कहीं भी नहीं जाना है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमारे साथ यूं ही शिमला FM पर। थानेदार फिल्म से इंजॉय कीजिए प्रोग्राम का ये फर्स्ट म्यूजिकल नंबर। आवाजें हैं बप्पी लहरी, अनुराधा पौडवाल और साथियों की।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी

0: आवाज बुलंद करे और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला सुन रहे हैं आप हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

वेल, कुछ रॉकिंग म्यूजिकल नंबर्स एंजॉय कर रहे हैं आप हमारे साथ. म्यूजिक मस्ती है प्रोग्राम, और आइए अब एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का ये नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर फ्रॉम द मूवी किशन कन्हैया. अमित कुमार के साथ इस गीत में आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज़.

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: वेल लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और ये दिल लगी फिल्म का गीत अभी हमने आपको सुनवाया था अभिजीत की आवाज में। अभिजीत के साथ अनुराधा श्रीराम की आवाज, लीजिए अब सुनिए BB No. 1 फिल्म के इस गीत में। जी हाँ, इस वक्त आप ट्यून इन हैं हमारे साथ FM शिमला पर और सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हम फिल्म का गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज़ें इस गीत में आपने सुनी। और उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रोग्राम आप जो हैं अच्छी तरह से खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और नेक्स्ट जो सॉन्ग है हमारे पास, वो हमने आपके लिए चुना है कुली नंबर 1 फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। तो लीजिए इंजॉय कीजिए प्रोग्राम में एक और प्यारा सा गीत। और FM शिमला पर इस वक्त हमारे साथ आप सुन रहे हैं म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम।

जी हाँ, कूली नंबर फिल्म वन फिल्म से ये लवली सॉन्ग आपने इंजॉय किया, और ये वो सॉन्ग्स हैं माय डियर लिसनर्स जो के सिर्फ मूड फ्रेश नहीं करते हैं बल्कि आपकी बॉडी और माइंड को भी एनर्जी से भर देते हैं। और आज भी जब कभी भी कहीं भी ये सॉन्ग्स बजते हुए सुनाई देते हैं ना, तो कदम खुद ब खुद इनके साथ थिरकने लगते हैं, मन झूमने लगता है और रूह जो है हमारी वो भी एकदम तृप्त हो जाती है। क्यों, सही कहा ना हमने? तो जनाब, अगर आप भी हमारी इस बात से इत्तफाक रखते हैं तो यूं ही इंजॉय करते रहिए हमारे साथ FM शिमला पर ये दिलकश प्रोग्राम्स जो कि एक के बाद एक हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके अपने चहेते FM शिमला पर। और फिलहाल इंजॉय कीजिए प्रोग्राम का ये नेक्स्ट लवली म्यूजिकल नंबर। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की फिल्म राजकुमार।

ये था आज के इस प्रोग्राम का आखिरी गीत जो हमने आपको सुनवाया मोहरा फिल्म से। इस गीत में आवाज़ें थी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। तो माय डियर लिसनर्स, आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमारे साथ यूं ही शिमला FM पर।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
1: इस वक्त आप ट्यून इन हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर। दोपहर के 2 बजे हैं, तो आइए एफएम शिमला पर अब सुनते हैं हमारा नॉन फिल्मी प्रोग्राम सबरंग। प्रोग्राम की पहली पेशकश अदनान सामी की आवाज में।

जी हाँ, आप ट्यून इन हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर और सुन रहे हैं सब रंग कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर हिंदी समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी

0: तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
5: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
6: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

0: बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर

0: मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। जी हाँ, दोपहर के 2:30 हो गए हैं और FM शिमला पर पहाड़ी लोकगीतों के शौकीन अपने तमाम सुनने वालों के लिए फिर एक बार हम लेकर आ गए हैं पहाड़ी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सुमन देवी की आवाज़ में ये लोकगीत।

पहाड़ी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर सुन रहे हैं आप हमारे साथ एफएम शिमला पर। सुभाष गुप्ता की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आइए अब सुनते हैं श्वेता शर्मा की आवाज में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

पूनम शर्मा की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आइए अब सुनते हैं अंकुश भारद्वाज की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

पहाड़ी लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। तीन बजने को है आकाशवाणी के शिमला केंद्र से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
2: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
3: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नशा मुक्ति का संदेश देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से ही मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार का पहला नशा मुक्ति केंद्र भी आरंभ हो गया है और जल्द ही दूसरा महिला नशा मुक्ति केंद्र कांगड़ा में खोला जाएगा।
4: समर फेस्टिवल शिमला का आगाज हर वर्ष होता था, इस बार इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीमें वो सम्मिलित हो रही है और इसमें चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल जो हमारा ये आयोजन है इसके लिए आज शिमला समर फेस्टिवल से आज इसकी शुरुआत। मशोबरा में पहला डी एडिक्शन सेंटर

0: जो हमारी लेडीज है के लिए खोला जा रहा है।
1: इस बीच अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत है, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन और निराधार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी नेता या कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए किसी भी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। विनोद जिंटा ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने नीरज भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप निभारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जाँच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप निभारद्वाज ने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार के भीतर भारी असंतोष और सरकार दिशाहीन हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर उसका उचित जवाब देगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: ये थे प्रादेशिक समाचार। आइए अब सुने सामयिक चर्चा। विषय है, मोदी सरकार के 12 वर्षों ने भारत के निर्माण में जन आकांक्षाओं को दिया नया आकार। वाचक हैं राकेश शर्मा।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल ने भारत को अवसरों, इनोवेशन और आत्मविश्वास से प्रेरित एक आकांक्षी देश में बदल दिया है। गवर्नेंस में सुधार, टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों पर केंद्रित नीतियों ने भारतीयों के अपने भविष्य को देखने के नज़रिए को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, अगले 7 से 8 वर्ष में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भारत का अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम कुछ साल पहले एकल अंकों की संख्या से बढ़कर आज लगभग 400 हो गया है, जिसमें से एक स्टार्टअप ने हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य अब लगभग 9 अरब डॉलर है और अगले 7 से 8 वर्ष के अंत तक इसके 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2014 में लगभग 350 से 400 स्टार्टअप से बढ़कर वर्तमान में 23 लाख से अधिक हो गया है, जिससे लगभग 24 से 25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। इनमें से लगभग आधे स्टार्टअप द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में स्थित है, जबकि 35 से 39% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं। हाल ही में हुए एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण में लगभग 1,500 मीडियाकर्मी और लगभग 10,000 दर्शक शामिल हुए, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। सरकार के कुछ शुरुआती सुधार नागरिक केंद्रित शासन मॉडल की ओर बदलाव का प्रतीक थे। इन सुधारों से ये विश्वास पैदा हुआ कि सफलता प्रभाव या सिफारिश की बजाय योग्यता और कड़ी मेहनत से प्राप्त की जा सकती है। पिछले 12 वर्षों में प्रक्रियात्मक के साथ साथ सबसे गहरा परिवर्तन

0: मनोवैज्ञानिक भी रहा है और भारत में एक नई महत्वाकांक्षी संस्कृति का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में मानसिकता में जो बदलाव आया है वो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ये बदलाव छोटे शहरों और गैर महानगरीय पृष्ठभूमि से उभरने वाले सिविल सेवा परीक्षा के शीर्ष विजेताओं की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अवसरों के लोकतंत्रीकरण का दर्शाव है। सरकार ने एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है जिसमें नागरिक राष्ट्रीय वैज्ञानिक उपलब्धियों से अधिकाधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और नवाचार को एक साझा राष्ट्रीय प्रयास के रूप में देखते हैं। मोदी ने असफलताओं के बाद वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और उनकी सफलताओं का जश्न मनाया, जिससे ये धारणा सामान्य हो गई है कि विफलता नवाचार और प्रगति का एक हिस्सा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की सफल लैंडिंग ने विज्ञान में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई है, जबकि भारतीय लूनर मिशन की पिछली खोजों से चंद्रमा पर पानी के अणुओं के सबूतों का पता लगाने में मदद मिली थी। मोदी सरकार ने दशकों से सीमित पहुंच वाले रणनीतिक क्षेत्रों जैसे कि अंतरिक्ष और परमाणु इकोसिस्टम के कुछ हिस्सों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। ये क्षेत्र परंपरागत रूप से बंद दरवाजों के पीछे संचालित होते थे, लेकिन अब उद्योग, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के साथ एकीकृत हो गए हैं। इस नीतिगत बदलाव ने करियर के अवसरों का विस्तार किया है, नवाचार को गति दी है और भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया है। विकसित भारत जैसी पहल घरेलू तकनीक तुलनाओं की बजाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत की प्रगति का मूल्यांकन करने पर व्यापक जोर देती हैं। कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में भी सार्वभौमिक और पारदर्शी कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति हुई है। आवास और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत जाति, धर्म या किसी अन्य संबद्धता के आधार पर भेदभाव किए बिना लाभ वितरित किए जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक संस्थानों और शासन प्रणालियों में अधिक विश्वास पैदा हो रहा है। भारत के विकास के सफर में सार्वजनिक निजी सहयोग को और मजबूत करना, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों का निरंतर विस्तार करना और प्रदर्शन एवं नवाचार के वैश्विक मानकों का पालन करना आवश्यक होगा। सरकार का दीर्घकालिक उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि एक सशक्त और महत्वाकांक्षी समाज का निर्माण करना है, जो 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान दे सकें। इसके साथ ही सामयिक चर्चा सम्पन्न हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था, मोदी सरकार के 12 वर्षों ने भारत के निर्माण में जन आकांक्षाओं को दिया नया आकार। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, पुराने फिल्मी गीतों का दौर कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये गीत तो सदाबहार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। तो चलिए, आपके चहेते FM शिमला पर फिर एक बार आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी दौर के कुछ शानदार चुनिंदा फिल्मी गीत, क्योंकि FM शिमला पर ये वक्त है फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपकी परछाइयाँ फ़िल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। रज़ा मेहंदी अली ख़ान के बोलों को संगीत से सजाया था मदन मोहन ने।

दो दिलों की मोहब्बत भरी ये कहानी आपने सुनी दर्पण फिल्म के इस प्यारे से गीत में, और देखिए कितनी शिद्दत से मोहब्बत भरी इस प्रेम कहानी के दर्द को शब्दों में उतारा गया, कैसे सुरों में पिरोया गया। जी हाँ, ये वो दौर था जब गीत और संगीत की मिसालें दी जाती थी। आखिर यूं ही तो ये गीत नहीं बसे हैं आज तक हमारे दिलो दिमाग में। इसी कड़ी में आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम का अगला गीत, आशा भोसले की आवाज़ में, कश्मीर की कली फिल्म से।

संगम फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। जी हाँ, आप ट्यून इन हैं हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 3:30 हुए हैं, लीजिए पेश है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ना केवल हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र की दिशा भी तय करता है। आज का हमारा विषय है नैतिक मूल्य, एक बेहतर जीवन की आधारशिला। दोस्तों, नैतिक मूल्य अर्थात सत्य, ईमानदारी, सम्मान, करुणा, सहनशीलता, जिम्मेदारी और मानवता जैसे गुण, ये वे गुण हैं जो हमें केवल सफल ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। आइए इस विचार की यात्रा की शुरुआत एक खूबसूरत गीत के साथ करते हैं।

दोस्तों, आपने सुना ये प्रेरणादायक गीत। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। हमारे पास आधुनिक सुविधाएँ हैं, तेज संचार है और अनगिनत अवसर है, लेकिन यदि जीवन में नैतिकता ना हो तो ये प्रगति अधूरी रह जाती है। एक व्यक्ति की पहचान उसके पद, धन या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों से होता है। जब हम सच बोलते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। नैतिक मूल्य की पहली पाठशाला हमारा परिवार ही होता है। माता पिता बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन

और सम्मान की शिक्षा देते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। इसलिए अभिभावकों को बड़ों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं को आदर्श प्रस्तुत करें। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो जीवन के सफर और अच्छे संस्कारों की प्रेरणा देता है।

बहुत सुंदर गीत दोस्तों। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन नैतिक मूल्य हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। दोस्तों, नैतिक मूल्यों पर बातचीत तो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये जानकारी। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचलवासियों के लिए उपलब्ध रहेगा। निवासी sec.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंसाधन कार्य हेतु किया जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नैतिक मूल्य की। आज के युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, सोशल मीडिया का प्रभाव भी बढ़ रहा है और सफलता पाने की दौड़ भी तेज हो गई है। ऐसे समय में ईमानदारी, अनुशासन, समय की पाबंदी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे मूल्य विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान करते हैं। केवल अच्छे अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि समाज में लोग ईमानदार और जिम्मेदार होंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और विश्वास का वातावरण बनेगा। नैतिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। एक छोटी सी मदद, एक अच्छा व्यवहार और एक सच्चा शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। आइए अब सुनते हैं एक प्रेरणादायक गीत जो हमें आगे बढ़ने की सही राह चुनने की प्रेरणा देते हैं।

दोस्तों, उम्मीद और सकारात्मक सोच नैतिक जीवन की महत्वपूर्ण नींव है। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तब हमारे कर्म भी सकारात्मक बनते हैं। आज का युग डिजिटल युग है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। ऑनलाइन झूठी जानकारी फैलाना, किसी का अपमान करना या गलत सामग्री साझा करना नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। हमें डिजिटल दुनिया में भी वही व्यवहार अपनाना चाहिए जो हम वास्तविक जीवन में अपनाते हैं। सम्मान, सत्य और जिम्मेदारी एक मजबूत राष्ट्र केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि राष्ट्र तब मजबूत बनता है जब उसके नागरिक नैतिक और जिम्मेदार हो। जब लोग अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं, नियमों का सम्मान करते हैं और समाज के हित में कार्य करते हैं, तब राष्ट्र प्रगति करता है। इसी भावना के साथ सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

दोस्तों, देश के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी भी एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। नैतिक मूल्य का सबसे सुंदर रूप है मानवता। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ये छोटे छोटे कार्य समाज को बेहतर बनाते हैं। मानवता हमें सिखाती है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझें, उनके प्रति संवेदनशील रहे। आज दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है प्रेम, करुणा और सहानुभूति की। इसी के साथ सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

साथियों, नैतिक मूल्य हमारे जीवन का आधार है। वे हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाते हैं। वे हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं और समाज को बेहतर दिशा देते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, सत्य, ईमानदारी, करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमित कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए FM शिमला।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर। जी हाँ, शाम के 4 बज गए हैं और FM शिमला पर गीत संगीत का सिलसिला अभी भी जारी है और अब बारी है फिल्म संगीत की। सुनवा रहे हैं आपको सातवां आसमान फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

वेल, आकाशवाणी शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। जी हाँ, आकाशवाणी पूरे करने जा रहा है आज अपने प्रसारण के 90 साल और ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो कि देश के विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। आपको बता दें कि देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी जो है आज अपने 90 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। साल 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था और ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। आपको बता दें कि साल 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी जो है 551 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए देश के विभिन्न भूभागों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान को हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार सुनाता है और साथ ही साथ स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन भी देता है। तो आप अपना साथ आकाशवाणी और FM शिमला पर हमारे साथ यूं ही बनाए रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और बढ़िया सा प्यारा सा

प्रेम फिल्म का ये लवली सॉन्ग आपने एंजॉय किया नलिन दवे और अलका याग्निक की आवाजों में। जी हाँ, एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और बात करें शिमला शहर की, तो इन दिनों खूबसूरत शिमला शहर की जो खूबसूरती है वो डबल हो गई है, क्योंकि हमारे खूबसूरत शिमला में इन दिनों चल रही हैं तैयारियां हर साल होने वाले समर फेस्टिवल्स की। और इसके चलते शिमला के गलियारों में खूब चहल पहल और रौनकें इन दिनों जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। पहाड़ों की रानी शिमला जो है वो आजकल सैलानियों से गुलजार है जनाब। और ऐसे में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, जो कि लाजमी है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं बाहर से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और उनसे हम यही कहेंगे कि कोऑपरेट कीजिएगा शिमला और प्रशासन के साथ। शिमला जो है आपका अपना शहर है, लॉज एंड रूल्स को काइंडली प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो।

चलते चलते अब आज के इस सफ़र के आखिर में आपको हम सुनवा रहे हैं आज के इस हसीन सफ़र का ये आखिरी गीत, जिसे हमने आपके लिए चुना है करण अर्जुन फिल्म में से, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

तो लिसनर्स, इसी गीत के साथ आज के इस सफर से विदा लेने की मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए यूं ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं चंबियाली कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी शिमला सांझरे 4 बजे कने 50 मिनट हुई है। वक्त है तुसरे मंडियाली कार्यक्रम आरा।

2027 जिला पहला चरणा से शुरू हुई गिरा और देखा तू सारे घरा कोई भी आई सकाएं या तू सते पूछी भी सकाएं जेड़े 33 सवाल है यो तू सते पूछे जाने और तू सा जेड़े देखा इधरी सही सही जानकारी देनी भी तू सा जो क्या फायदे होया करें और तू सारे घर संबंधी जो भी सवाल तू सते पूछ गए तो तू सा सो जवाब देने ता ए ता हुई की गलबात। एबे आसा थोड़ी जी गलबात करनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत कम ब्याज दर पर अपना व्यवसाय शुरू करने रे कट्ठे लोन दे आई इदी मंजा प्रधानमंत्री मुद्रा जिड़ी भी लोका जो बैंक ते लोन दिते जा और जिड़ी ये स्कीम ही ये साल 2015 मंजा शुरू हुई थी भारत रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधरी शुरुआत की थी। इस योजना रा मकसद व्यवसाय जो बढ़ावा देना ताकि मानू भारत सरकार ते लोन लई कने अपने व्यवसाय जो शुरू करो और भारत दे सारी जड़ी अर्थव्यवस्था है इदी जो सुधारने मंजा स्यों मदद करो। देखा हर मानू री इच्छा हुआई कि से बढ़िया नौकरी करो फिर एक अच्छा बिजनेस करना चाह बिजनेस करने के कट्ठे डवेरी जरूरत भी पवाई और कई बार डवेरा इंतजाम नहीं हुई पाता ता इदी जो देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्रा योजना जड़ी से शुरुआत इधरी कितरी भारत सरकार री ये एक मुख्य योजना ही जेडे सब्जी बेचने वाले दुकानदार छोटे छोटे उद्योग करने वाले कारीगर या एड़े कई मानू जो अपना बिजनेस तो शुरू करना चाहें पर स्यों इस स्कीम रा फायदा सो नहीं उठाई पाते इधर कट्ठे सरकार तीन प्रकार रा जड़ा लोन आ इदी मंजा दिते जा एक का देखा शिशु लोन ये 50,000 रुपए तक दिते जा और दूजा किशोर लोन किशोर ऋण जड़ा ये आ ये 50,000 ते लई कने 5,00,000 रुपए तक दिते जा और इं चारे आसारा जड़ा त्रीजा सिया तरुण लोन 5,00,000 ते लई कने 10,00,000 रुपए तक दिते जा और जड़ा मैं तुसू दस्या कि भी जड़े आसारे छोटे छोटे दुकानदार हुई गए या फल बेचने वाले सब्जी बेचने वाले या ब्यूटी पार्लर या साइकिल रा कारोबार करने वाले कुटीर उद्योग जो शामिल है इन्हां सभी जो मुद्रा लोन रे तहत ऋण दित्या जा ताकि सभी लोग अपना व्यवसाय जो बढ़ाई सको एड़ा करने ते देश मंजा गरीबी दूर होनी और आसारा जेड़ा भारत वर्षा से अगे बढ़ना जेड़ा देखा तुसे इस लोन जो अपने नज़दीकी SBI बैंकूंगा या पंजाब नेशनल बैंकूंगा HDFC बैंकूंगा जो भी तू सारे सरकारी बैंक के तिथि जाई सकाएं और तिथि जाई कने तुसे इस लोन इकट्ठे गलबात कर सकाएं और तिथि ते बाद जेड़ा तुस जो ये लोन मिलना और इदी ते देखा क्या फायदे होने कि भी इस योजना ते बेरोजगारी कम होनी देश सारी अर्थव्यवस्था में जा सुधार होना मानुआ जो कम ब्याज दर पर लोन मिलना और इस योजना के तहत मानुआ जो बिना गारंटी के लोन दिते जा मुद्रा योजना ता आसा सभी जो चाहिए कि भी जड़ा घर बेले नहीं बैठना अपना जड़ा भी कारोबार आ जो भी आसे काम करना चाहें इधर कट्ठे आसे इस स्कीम रा फायदा उठाई सकें ता ए ता होगी गलबात। एबे अपने सुनने वाले जो एक होर बढ़िया जी गीत सुनाई लाएं तो सुना ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मंडियाली कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अब आप सुनेंगे पंगुवाली कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला बेल्दी 5:20 55 सेकंड भोरे पेश है त्यों अपू मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सूबे जनक करताप सिंह ठाकुर पंगवाया तरफा बेल्दी नमस्ते। जी सुनने वाले हाजरे अखबार फिर त्यों अपू मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम गिन के त्यों सुबह सुनने वाले के आज के इस कार्यक्रम अंतर अखबार फिर स्वागत करते सुनने वाले हो। आज के कार्यक्रम अंतर अगर बढ़े इसके पहले तुहां जनियस पहले भी जानकारी देते जरूर बताते कि हैं पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम हफ्ते अंतर चार रोज सुमारे बजते शंचरे बेलदिया 5:20 पुठा शुरू करते और 5:50 तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता। इस दौरान अस तुम जो डकबोक लाते जे भी दियर विषय बूते और साथे साथे देशे प्रदेशे खास खास खबर और अपने इलाके जो जुड़ोड़ी कोई खबर भूं से भी तुम दिखी नहीं थे और अबल अबल घीत्यारी की आवाज़ अंतर घीते भी सुनाते कार्यक्रम तेन जन तुम सभी पता है कि आकाशवाणी जे प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव जस बूते तस जो साथे साथे आकाशवाणी जे FM चैनल है 104.7 MHz ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पर तुम कार्यक्रम सुनते कई बार सुनने वाले जिखे अस बोते 104.7 तहना सुन तो चार शायद चार नहीं अस बोलो को चार अहम बोलिए अंतर जस्त से एनू पढ़ते और ये कार्यक्रम तू DTH तो मोबाइल ऐप पुट भी आनंद नहते तो सुनने वाले शुरुआत करते अख बेदे जिन लोकगीत क्या फिर लाते तो जे अगर डकपोक आज अस जो डकपोक लानी तो संतर डिजिटल इंडिया मधुमक्खी पालन गण के जे कम आस्ता तसे बारे तठा जनगणना 2027 भी चलो रस्ते बारे भी थोड़ी गल आनी तो शुरुआत तो सुनते बदे जन लोकगीत।

जी सुनने वालों, राकेश कुमार शर्मा आवाज़ अंतरा बेदजनी लोक गीत तुम सुनो और पूरा आनंद तुम नीरा बोल। अगर डकपोक लाते आवे तुम जो थोड़ी डिजिटल इंडिया जे भारत सरकार या पहले तसे बारे सुनने वालों, आज एनु तो आवे हर मैन जान लग गई रहा कि जे डिजिटल इंडिया वाला अभियान आसता है, जे कार्यक्रम आसता है, जे पहल आसती ऐसे कतरा फायदा जस्ता से आम मैन बोन लगो रहा। सरकारी तरफा पहल जस्ती से शुरुआत तो बहुत ही 1 जुलाई 2015 अंतर करी थी। ऐसे मकसद देश अंतर डिजिटल सेवाएं के वास्ते जस्त से खासा कम करना और जस्त से ऐसे ढांचा तैयार करने वास्ते है शुरुआत करी थी।

कि अगर सरकार इस पहल न करती तो देश जे डिजिटल न्योता बनना या दुनिया अंतर जिस तरह से डिजिटल वाला काम काज जे हैं देश अंतर न्योता भूना भूना थे, लेकिन जिखे सरकार पहल करती, सरकार इस पुट कार्यक्रम बनाई के जे काम करती है ना, आख मकसद जो साथ ये काम करती तो काम जिस तरह से बड़ा प्रभावी तरीके जो भूता और ज़्यादा जल्दी भूता और आम मेहनत तो कर जिस तरह से सहूलियत पूजती है। इस कार्यक्रम में तहत भी जिस तरह से हर एक महनु सेवा देने से मकसद दस्ता सरकारी सेवाएं के अंतर जिस तरह से खुलापन लोड़ी हर महनु तकर पुजोर लोड़ी ग्रां तथा शहरी इलाके अंतर जिस तरह से बराबर कम जिस तरह से भोरा लोड़ी ए भी अख मकसद दस्ता कि इस दौरान जे पहल भोरी तसे बारे भी थोड़ी गल आना जरूरी है। उमंग खनी पहल भूथी जिस अंतर मती सेवाएं जिस तरह से एक ही जगह अंतर शुरू करी थी UPI आज हर महन जिस तरह से पेमेंट जे मोबाइल के कन लग रहा है ना कैशलैस लेन देन बढ़ावा देने वाले वाली स्कीम अभी जे डिजिटल भुगतान भूता आधार डिजिटल पहचान का नेक तरीका अस्त है भी डिजिटल लॉकर इड़ी तकर कि जे कागजात अस्ते तस वास्ते भी जस्त सुमाने वास्ते भी जस्त से सहूलियत डिजिटल तरीके जे भूती भारत नेट ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई वास्ते जस्त से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी जस्त तैयार करी रहा ग्रह तठा जे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अस्ता तसे बारे भी जस्त से कम यून लगो रही ऑनलाइन सरकारी सेवा डिजिटल बैंकिंग तठा DBT है ना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाली जे स्कीम अस्ती कोई भी कसे के स्कीम अस्ती जे सरकारी तरफा तसे इमदाद हतीन लगो रही तसे से दे बैंक खाते पुजन लगो रही इस डिजिटल इंडिया वाली पहल तहत जस्त से किसान पोर्टल खेती बाड़ी जानकारी ऑनलाइन पढ़ाई बुन लगो रही टेलीमेडिसिन है ना जड़ी दूर दराजे हैं जन इलाके अस्ते अगर तड़ी अगर एनी जानकारी जे तड़ी उपलब्ध नहीं तसे भी टेलीमेडिसिन माध्यम जो अस्त से आज हतीन लगो रही और ई कॉमर्स तथा स्वरोजगार आज हर मैल जिस तरह से बते खरीदारी जिस तरह से ऑनलाइन कर लग रहा है ना और माते मैल जिस तरह से एने काम करते जैसे वेली एक महन के जानकारी डिजिटल माध्यम जो हरी महन तक पुजती और हजारों लाखों महनों तक पुजती तो तस महन की जे कन लग रहा इस काम तस्ते अख रुजगार भी पैदा होने लग रहा अलग अलग तरीक जो पैंगे जिन्हें दूर दराजे इलाके पढ़ाई भी मौके से सेहत जो जुड़ो रही जो जानकारी तहनी सहूलियत हतीन लगो रही नौजवान वास्ते भी पैंगे कलार भी है रुजगार अस्ता स्कीमी के जे सदा फायदे जस्ते आम महनों तक पुजन लग रहा है पैंगे किनार भी अस्ता लोकल जे हैं तठनी जे संस्कृति या तठनी जे हेने वाले जे जगह अस्ती तस वास्ते से टूरिस्ट के सीधी जानकारी अस्ती डिजिटल माध्यम जो अस्त से तनी फायदा उठाई के जस्त से पुजन लगो रहे तनी बेली आम मैनू जस्त से रोजगार तड़ी होर बढ़ने लगो रहा दिखते कि बोल सकते हैं ऐसे बारे कि नेटवर्क अक तक कनेक्टिविटी बड़ी कम होती है ना जस हैं बोले अंतर बोते कि भाई शिंगला जे अस्त से नठोर अस्ता शिंगला सुसर नहीं शिंगला है ना सिग्नल नू बोलिया बोते डिजिटल पढ़ाई भी कमी अस्ती हो तेरे मैन जस्ते से इस्तेमाल ढंग जो नहीं कर लगो रहे थोड़े बहुत नौजवान या जे पढ़े लिखे मैन अस्ते जाना थोड़ा पहले बेर भी इस्तेमाल किए रहे या तड़ी कोई जस्ते कसी कहीं शिचोर है इसे जरूर इस्तेमाल कर लगो रहे आम महनु हो भी जस्ते से यानी पढ़ाई करनी अस्ती बिजली दिखते बीते तो इस कारण भी कई बार जस्ते से ऐसे फ़ायदा नहीं तत्र उठाए बढ़ते इंटरनेट वाला जे सिग्नल बूता तैसे कम है ज़्यादा अस्ता या फिर बोल सकते तैसे ऐबे पहले बोते 2G थे या 4G तक जैसे कोशिश करिए रस्ते तो कोड़ी कोड़ी से पुजन लग रहा और ऐसे अलावा जे साइबर सुरक्षा वाला खतरा अस्ता तो फिर भी मैं डरते बे चक्करें अंतर तपड़े कोड़ी खाली ना लोड़ी बोरे ठीक है तसे बारे ऐसा सावधानी थाना जरूरी लेकिन डरने जरूरत नहीं। कुल मिलाकर अस ये बोल सकते कि डिजिटल इंडिया न सिर्फ अख सरकारी काम है बल्कि भारतीय मजबूत बनाने वास्ते या भारतीय हर महनू जस्ते मजबूत बनाने वाली अख तकड़ी जनी पहल अस्ती सरकारी तरफा डिजिटल इंडिया आज करें भारतीय एक नई ताकत अस्ती और डिजिटल इंडिया तो मजबूत मैन अस्ते और मजबूत हैं देश अस्ता है कुछ जानकारियां से तुह जे बंटी कुछ अगर बढ़ना के होर बोख लान के पहले अख होर बेदे जिन लोग ही सुनाते फिर लाते तुह जे होर बोख।

जी सुनने वाले नी कि रामे आवाज अंतर बेदे जन लोग की तुम सुनू डकपोक लाते आवे थोड़े जनी गण पाने अख बढ़िया कमाए। सुनने वाले वैसे तो आज के टाइम अंतर जे ग्रां अंतर रहते तना ज़्यादा पता है कि कहनी कहनी कमाए और किस तरीके जो नैनी, लेकिन बच बच याद दिवाणु हैं भी कम है और सरकार भी इस वास्ते कुछ ना कुछ इमदाद देती और कुछ ना कुछ जस्त से सहूलियतें भी देती और कुछ हो रहे जे जरूरी चीज़ बीती तरह भी मुहैया कराते। तो ऐसे बारे अस ये बोल सकते कि एकता जिस तरह से आमदनी है तरीका है संतर जे लागत कम लगती। आज के टाइम हेरे अस हेते कि हर जगह जस्ते बते देश

अच्छी चीज़ें लौटी, शुद्ध चीज़ें लौटी या कुदरती चीज़ें लौटी, अक्षब्द ज़्यादा चलन लगो रहा ऑर्गेनिक बते है ना, भाई की मिलावट न लोड़ी है ना, कुछ साफ जे पैदा भूत तिखणी आसा तटना से हथियर लोड़ी और तसे जे बढ़िया जे अस्तु तसे गुणवत्ता भी खारी लोड़ी और तस अंतर कोई होर किस्में चीज़ें ना जुड़ी लोड़ी। तो ऐस कम अंतर कम लागत मतलब कि खर्चा कम भूता खेती बाड़ी तथा बागबानी अंतर होर भी फायदा भूता किसके ऐसे जे पराग कण भूते मतलब बोलने आस्ता कि जिखे फूले फूलते तो गण एक जगह के हर जगह खेते तो तनी बेली तने जे छाड़िया जो तने जो अस्ते होरे जे पराग कण अस्ते से एक जगह हर जगह तक पूछते तनी बेली जरूरत भी पड़ती कई जगह तो खास तौर पर तक आना, लेकिन जना खुद अगर गण पाड़ हो रहे अस्ता तो तना दिया कम आसान हो गया था। ग्रां तठा जे पहाड़ी इलाके अंतर जस्ते से रोजगार या खरा मौका आस्ता है, वातावरण तठा जे जैविक विविधता भी ऐसे बेली जस्त से पूरी थी, कम जिमी जरूरत पड़ती है ऐसे ज़्यादा जगह ही जरूरत न पड़ती है ना, और बगे झिंगालियाँ बीड़ियाँ या जड़ी भी आ जगह बुई लड़िया अंतर भी जस्त से कई कम कन लगोरे पान लगोरे जिलहन तठा नौजवान वास्ते खरा कम आस्ता, मुश्किलें की थी बीमारी के भी डर भूता और ऐसे वास्ते जैसे से कई बार जब मौसम था वातावरण भी असर पड़ता, तकनीकी जरूरत भी आज बढ़ गई रही और जिखे अस बते तस्के जैसा मखीर अस इकट्ठो करते तो तैसे जस बोते कि दूर पजान तक या तसे नौ बनाण वास्ते जस ब्रांडिंग बोते तस्ती भी थोड़ी दिक्कत देती, जिखे अखबार तो चली गया काम फिर तो चली गया। कुल मिलाए क्या ये बोल सकते कि गण पाना अखना कम आए जैसे अंतर कम खर्चा लगता और कम जिमी लगती तठा कम संसाधन लगते और खरी बढ़िया जी आमदन भूती किसान नौजवान जिलहान तठा स्वयं सहायता समूह वास्ते अख रोजगार और आमदन वाला बढ़िया तरीका था। गण पाने वाली न सिर्फ मखीर पैदा हो तो बल्कि खेती बाड़ी वास्ते जिसता से बढ़िया माहौल बनता और ग्रह जो माड़ी स्थिति आई तस तकड़ेने वास्ते भी खरा मौका है। अख थोड़ी जनी होरी गल अस तुहें जो लाते कि भाई जनगणना 2027 भी चलो रही अस्ती, अख जून 2026 के ना 15 जून 2026 तक जस्ते से scensus.gov.in पोर्टल पर गई के जस्ते से खुद भी जनगणना ही बारे जानकारियां जस्ते से दी सकते, 16 जून से 15 जुलाई तक जे मकान के गिनती तथा होर जानकारी भी कठिन अस्ती, खुद अगर तू करे तो आसा इस वास्ते जस्ते से पोर्टल पुट 33 सवाल के जवाब दैनते दैनते जानकारी आप पूरी गेती तो कुछ खास जानकारी थी। इसके पहले कि अस तुह न छोटी जना गीत सुने तुह जरूर बताई देते कि ही हैं जस्ते से बते दुनिया अंतर साथ साथ हैं देश अंतर जस्ते से ही खीणे पीने जे चीज़ अस्ती तनी भी दिन मनाया हैं सेंटर सरकार जे सेहत मंत्री अस्ता जगत प्रकाश न रहते नहीं बोलूँ कि इन्हें वाले टाइम मंत्रा सा जरूर अपना जिस तरह से सुरक्षित तठा जे स्वच्छ खास साफ सुथरा खीण खीणे वास्ते जिस तरह से असा अपना ध्यान थैना और तहना बोलूँ कि जे अगर हैं आम मैं जिस तरह से अगर खीण पीण तसे ठीक फूल है ना, खासकर जे बते खुराक वाली चीज़ें अस खीण लगो रहे अगर मैं मजबूत फूल तो हैं देश भी मजबूत फूल अस्ता और साथ साथ जैसे से मठले गभरू और प्योहड़ी के भी अगर अस ध्यान थेलता तना भी खारी सेहत हो सकती। सुनने वाली एक होरी खबर है कि आकाशवाणी जे गौरवशाली या जस बोते कि 90 साल जैसे से पूरी गेरे 1936 अंतर जैसे से है शुरुआत वो थी इसे दने रोज और आज के टाइम अंतर जैसे से पूरे देश अंतर 591 जे केंद्र रस्ते से चलो रहे रस्ते और 146 बोली अंतर तठा 3 अलग अलग भाषा अंतर जस्ते से प्रसारण भूता और देशे 98% आबादी तक जस्ते से जो प्रोग्राम जस्ते से पूजते। तो ऐसे अलावा जहाँ सके खोरी खबर अस्ती कि भाई प्रधानमंत्री जे गरीब कल्याण योजना अस्ती तसंतर 12 साल तक जस्ते से यात्रा रेखांकित केरी नरेंद्र मोदी ही सोशल मीडिया पोस्ट अंतर माफ करें आज सोशल मीडिया पोस्ट अंतर तना बोलूँ कि देशे जंतर जे कई बदलाव वाला जे उगाई दैन लगो रे कि गरीब कल्याण तथा गरीब तथा जे वंचित वाड़े दी जस्त से सरकार अंतोदय जन स्कीम जस्त से बढ़िया तरीके जो चलान लग रही और अलग अलग तरीके जो धन खाता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तथा जे स्वच्छ भारत अभियान PM आवास योजना जल जीवन मिशन आयुष्मान भारत एने जे पहल करी के जस्त से ऐसे जस्त से

मौके जैसे सुसरेन लौरे ते कुछ खास खास खबर थी इसके पहले कि अस तुआ जे छोटी लोक ही सुनाई सुनने वाले अस तुआ जरूरी है बताना चाहते हैं कार्यक्रम जिसते से हफ्ते अंतर चार रोज इता सुमारे बजते शंचरे तुम जरूर सुने करे आज के टाइम अंतर कोशिश है नहीं भूल लगो रही कि अलग अलग माध्यम जो जिन्हें डी टी एच है मोबाइल ऐप फुट भी देती हूँ आराम जस सुनी सकते और कोशिश इठाएँ भी अन्य भी भूल लगो रही कि जे अलग अलग सोशल मीडिया वाले माध्यम है तसे माध्यम जो भी तुम मौके कभी कभी कार्यक्रम सुनने हथियार लगो रहे तो तुम्हारे अकबर जिन्हें लोकगीत हाँ सत्यार थे तो सुनाते लोकगीत

जी सुनने वाली रोशन लाले आवाज़ अंतर और खास अंदाज अंतर है बेदे जिन्हें लोग की तो सुनूँ कार्यक्रम में आनंद त्यू नैन लगो रे आसा जनू बताओ तुह कि आज जे हस्त से आकाशवाणी 90 साल पूरी गिरे और अगर सपने बोली गल करी सपने पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम में गल करी तो इनू सोच कि केखेणी तिखे का पुरुख थी जना कोशिश किए थी और जनू असा वो कि त्रई अलग अलग भाषाएं तथा 146 बोलियां अंतर जैसे से पूरे देश अंतर 591 जे केंद्र स्तरी

कार्यक्रम चलन लगो रे तो ऐसा जस्ता से है पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम व्यस्ता कार्यक्रम में सुनने वाले हस्ते इसलिए कार्यक्रम चलो रहा कार्यक्रम बोली बोलने वाले हस्ते इसलिए जस्ता से कार्यक्रम हस्ता अस बच बच तो जो गल आते रहते कि जने कि यूनेस्को वाले के सर्वे बच बच ही तरह देते ना एनु बताते कि हिमाचल जे अलग अलग बोली हस्ती जे अभी मुकने वाले जे बोलने वाले जे लगातार घट पूर्ण लग रहे थे ना बचक पंगवाड़ी बोली भी हस्ती तो आकाशवाणी जैसे से सुहाने कोशिश करने लौरी था कार्यक्रम चलता था कुछ न कुछ ऐसे बात भूती और तू जिखे सुनते और अगर हुरियाँ बताते या अपने गैभरों भी चालते था ऐसे मकसद कुड़ी ने कुड़ी पूरा भूता हिब्या जैसे से घड़ी इशारा करन लगोरी इने वाले टाइम अंतर से बारे फिर विस्तार जो गल आते मुँह करताप सिंह ठाकुर पंगवा दिए पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम पूरे इजाजत तुआ से ब्याह जमेली नमस्ते।

पूर्ण करे तेना बचक पंगवाड़ी बोली भी असती। तो आकाशवाणी जैसे से सुमाने कोशिश करने लौरी था कार्यक्रम चलता था कुछ न कुछ ऐसे बात भूती और तू जिखें सुनते और अगर हरियाँ बताते या अपने गैबरों भी चालते था ऐसे मकसद कुड़ी न कुड़ी पूरा भूता हिब्या जैसे से घड़ी इशारा करने लगुरी इने वाले टाइम अंतर से बारे फिर विस्तार जो गल लाते मुँह करताप सिंह ठाकुर पंगवा दिए पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम पूरे इजाजत तुआ से ब्याह जमेली नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे पंगुआली कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं ब्रह्मदत्त व साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

ब्रह्मदत्त साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। अगला लोकगीत आइए सुनते हैं अंकुश भारद्वाज की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राज्यपाल आज शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद आज कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत गहरा और हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने संजौली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि चक्का जाम किसी समस्या का हल नहीं है और सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए उपलब्ध है।
8: जो भी कानून हाथ में लेगा वो गलत बात है। अगर ये सोचे कि इतने लोग ट्रैफिक में चलते हैं, वही प्रॉब्लम है, समस्या मिल बैठ के समाधान किया जा सकता है। मैं तो सबकी समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन ये सरकार का राजनीतिक चक्का जाम अच्छा नहीं होता।
7: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जाँच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी।
9: कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती, जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से सूटकेस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह की कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। जो भी आरोप है वो गंभीर है और हिमाचल की जनता आने वाले 2027 में इसका जवाब देगी।
7: लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने आज जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार ये व्यवस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। भरमौर से भाजपा विधायक

0: डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने आज कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। डॉक्टर जनकराज ने हृदय रोग विभाग में और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का भी सरकार से आग्रह किया। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में फिर से मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के चार जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को कड़क धूप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं महास्वी कार्यक्रम।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता के निशा शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। आशा है पे तुसे सब ठीक ठाक होने और अपना ध्यान रखने लगे रहोने। देखो तू पाज कल तेज आए तो आशा के कम से कम 8-9 ग्लास पानी रे पीने चाहिए ताकि आशा रे शरीर दे पानी री कमी ना हो। गलबात तो होंगी रानी, आओ तुसा के अपने कार्यक्रम और रूपरेखा दस दियो। आज आशा गलबात करनी विश्व महासागर ध्याड़े रे बारे दे और अटल पेंशन योजना रे बारे दे। आपने सुनने वाले के ऐसा खास खास खबरा भी सुनानिया और साथ साथ जो है तिनारा मनोरंजन भी करना। पर पहला थोड़ी जी गलबात करनी आशा जनगणना 2027 रे पहले चरणों रे बारे दे। जनगणना 2027 रे पहले चरणों रा आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य दे निर्धारित तरीका रे अनुसार 16 जून 2026 थे 15 जुलाई 2026 तक करया जाना। एते थे ठीक 15 दिन पहला यानी कि 1 जून 2026 थे लेकि 15 जून 2026 तक स्वगणना यानी कि आपो गिनने रा मौका भी हिमाचल वासिया के रहना। निवासी जो है से sc.census.gov.in पोर्टलो पांदी जाए कि आपो अपनी जानकारी जो है से परी सकोए। जनगणना 2027 रा काम डिजिटल माध्यमों थे जो है से करया जाना। पहले चरणों दे मकानारी स्थिति परिवारों के उपलब्ध सुविधाएं और परिस्थितियां थे संबंधित कुल जो है 33 प्रश्न पूछे जाने। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना दे दी गई सारी जानकारी जो है से गोपनीय होई, मतलब से कैसी और की नहीं दसी जानी और एतिरा उपयोग केवल नीति निर्माण और अनुसंधान कामारी ते ही जो से करया जावा। ए तो थी थोड़ी जी गलबात जनगणना 2027 रे बारे दे। तो आशा जो है ये भी अपने सुनने वाले के लोगी सुनाना।

दुपट्टा मेरा झूमर वाला, गाने वाली थी उर्मिल और साथी। तो आ साहेबे गल बात करनी विश्व महासागर त्याड़े रे बारे दे। विश्व महासागर त्याड़ा हर साल जो है 8 जून के मनाया जावा, यानी कि आज के दिन। इतेरा मुख्य उद्देश्य महासागरा द्वारा आसारे जीवनों दे नभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका रे प्रति जागरूकता फैलाना और तिना रे संरक्षण रे तई वैश्विक स्तरों पांदे कदम उठाना है। ये त्याड़ा आसा के याद लावा पई सागरे आसा के जीवन दे रख्या, और एबे ये आसारा

कर्तव्याय पै आसे इनारी जो है से रक्षा करिए। विश्व महासागर त्याड़ा मनाने री जो है से कल्पना सभी थे पहला 1992 दे रियो डी जनेरियो दे हुए पृथ्वी ग्रह शिखर सम्मेलन दे करी गई थी। इतरा मुख्य उद्देश्य महासागरा रे प्रति वैश्विक चेतना जगाना और संरक्षण रितई एकजुट होना था। इत थे बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा दिसंबर 2008 दे एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित करया था जेते रे तहत 8 जून 2009 के पहला आधिकारिक विश्व महासागर त्याड़ा मनाया गया। तदु थे ले कि आजो तक हर साल ये दिन एक विशेष थीमा साथे मनाया जावा। इना थीमा रा मुख्य केंद्र जो है से महासागरा दे बढ़दे प्रदूषण के रोकना, समुद्री जीवारी रक्षा करना और सतत विकासों के बढ़ावा देना होवा। एते साल विश्व महासागर त्याड़ी थीम री इमेजिंग नवे सिरे थे सोचना या पुनर्कल्पना करना आए। ये जो थीम आए एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण जो है से संदेश दियोई। महासागरा रा महत्व क्या है पहला तो तू साख दसी दूँ। महासागर रे महत्व के समझे बिना आसे एते थीमा रे मर्म के नहीं समझी सकते। महासागर केवल जो है एक पानी रा कटोरा नहीं आए बल्कि ये पृथ्वी रे जीवंत फेफड़े आए, ऑक्सीजन रा असली खजाना है। आम तौर पांदे लोग सोचो पे पृथ्वी के सभी थे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है जंगला और अमेजन रे डाला थे मिलो। पर वैज्ञानिक सच्चाई ये आई पई पृथ्वी री आधी थे ज़्यादा ऑक्सीजन लगभग 50% थे 80% महासागरा थे आई। समुद्रा रे ऊपरी सतह पांदे मौजूद समुद्री छोटे पौधे सूर्य री रोशनी थे प्रकाश संश्लेषण करोए और भारी मात्रा दे जो है से ऑक्सीजन छाड़ोए। वैश्विक जलवायु रा नियंत्रण महासागर जो है से पृथ्वी रे तापमान के ऋण योग्य बनाए रखने दे थर्मोस्टेट री तरह काम करे। ये जो है सूर्य री भीषण गर्मी के अपने पितरे सोखी सोखोए और समुद्री धाराओं रे माध्यम थे तेते ऊष्मा के पूरी दुनिया दे संतुलित रूपों दे बांडोए। अगर महासागर ना हो तो ये पृथ्वी रा तापमान इतना चरम सीमा पांदे पहुंच जाना पई जीवन रा अंत हो जाना। विशालतम कार्बन सिंक मानव उद्योग गड्डी और कारखाने से निकलने वाली हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड रा लगभग 30% हिस्सा महासागर अपने पितरे संभावित कर लो। ये मानवीय गतिविधियां थे पैदा हुई गर्मी रा जो है 90% हिस्सा सुखाई की ग्लोबल वार्मिंग री रफ्तार के रोकवा। महासागरा दे जीवनों री इतनी विविधता आई पे वैज्ञानिक आजो तक ए तेरा केवल एक छोटा जा हिस्सा यानी कि 10-20% ही खोजी सकी रे। लाखों प्रजातियां रे रंग बिरंगे पौधे मछलियां व्हेल शार्क और कोरल रीफ एते दे रोया। मूंगा चट्टाना के समुद्र रा वर्षा वन बोलिया जावा जो तटीय क्षेत्र के तूफाना थे जो ऐसे बचावा। अर्थव्यवस्था और आजीविका भी इतने थे मिलोई। दुनिया भरो रे अरबों लोग अपनी आजीविका रीतें सीधे तौर पांदे समुद्रों पांदे निर्भर रहे। मछली पालन समुद्री व्यापार और तटीय पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था रा मजबूत आधार आए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रा लगभग 80% संचालन समुद्री मार्गों थे ही होवा। महासागरा सामने देखो बहुत सारे जो है संकट खड़े दे। सभी थे बड़ा संकट जो है प्लास्टिक और एकल उपयोग प्लास्टिक रा कहर। ये आजोरी सभी थे भयानक त्रास दिया है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा और सिंगल यूज प्लास्टिक समुद्रा दे भाया जावा। ये प्लास्टिक वक्त तो साथे टूटे की माइक्रो

ओ सोनिए दिल देई के मुकर गई, गाने वाले थे उमा शंकर ठाकुर जी। तो ए ऐसा देखो, गल बात करनी अटल पेंशन योजना रे बारे दे। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई एक पेंशन योजना है, जे तेरा मुख्य उद्देश्य मुख्य रूपों थे असंगठित क्षेत्र दे काम करने वाले लोगों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आए। ये जो योजना है ये 18 थे 40 साल री उम्र रे सभी भारतीय नागरिका री तई खुली आए, जो आयकर नहीं लगी रे देने, और जो दूजी किसी सामाजिक सुरक्षा योजना रे सदस्य नहीं आए, सो लोग जो है इत योजना से जुड़ी सको। इत योजना री शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 जून 2015 के करी थी। इत योजना दे अंतर्गत लाभार्थी री 60 साल री उम्र होने थे बाद 1,000 रुपये थे लेके 5,000 रुपये तक री धनराशि पेंशन रे रूपों दे हर महीने जो है से दी जानी। इत योजना के तहत पेंशन की रकम लाभार्थी द्वारा करे गए निवेश और तीसरी उम्र रे हिसाबों से तय करी जानी। अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक के हर महीने प्रीमियम जमा करवाना पड़ना। तेते थे बाद आवेदक री उम्र 60 साल री होने थे बाद सरकार द्वारा जो है मासिक पेंशन रे रूपों दे आर्थिक सहायता जो है इसके दी जानी। अगर तुसे 18 साल री उम्र दे अटल पेंशन योजना दे शामिल होए और 1,000 रुपये हर महीने री पेंशन चाहोए तो तुसारा प्रीमियम 42 रुपये जो है से हर महीने कटिया जाना। अगर तुसे 30 साल री उम्र दे इत योजना साथे जुड़ोए तो 1,000 रुपये हर महीने री पेंशन लेना चाहो तो तुसाके 76 रुपये रा प्रीमियम हर महीने देना। 40 साल री उम्र दे तुसाके 291 रुपये रा प्रीमियम हर महीने देना। 18 साल री उम्र दे जो आदमी इत योजना साथे जुड़ा तो इसके 1,000 रुपये री महीने पेंशन री तक जो 42 रुपये जमा करने। इं ही जो है उम्र रे हिसाबों से इत दे प्रीमियम रखा गया है। इत योजना रा मुख्य उद्देश्य जो है से कामगार लोगों के पेंशन दे की तीना रे भविष्य के सुरक्षित करना आए और तीना के आत्मनिर्भर बनाना है। तुसे जितने चट इत योजना से जुड़ने इतना ही ज़्यादा फायदा जो है तुसा के इत ते मिलना। आऊँ तुसा के दस दूँ भी इत योजना रे लाभ क्या है। लाभार्थी के ये पेंशन राशि जीवन भर मिलने, आवेदन करता री मौत थे बाद तीसरी घर वाले के सही पेंशन राशि दे जानी। आवेदन करता री अगर मौत हुई जाओ और तीसरी घर वाली दोनों ही से दोनों मर जाओ तो नॉमिनी के 60 साल री उम्र तक जो जमा पेंशन री राशि है से वापस करी दी जानी। इत योजना दे 18 से 40 साल रा कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हुई सकवा जिसके बचत बैंक खाता है। आवेदन करता हर महीने तीजे महीने या 6 महीने रे आधारों बांधे अपने बैंक खाते थे ऑटो डेबिट रे माध्यमों थे रकम जो है से

कटवाई सको। आवेदनकर्ता सालों दे एक बार अपनी पेंशन राशि के बढ़ाने या घटाने रा जो है से विकल्प भी चुनी सको। ये योजना तिना लोग करते एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो रिटायर होने थे बाद नियमित आय सुनिश्चित करना जाए। ये योजना आम नागरिका रीते ही जीवन भर पेंशन री गारंटी दियोई। ये योजना भारत सरकार री एक सराहनीय पहल है जो कि असंगठित क्षेत्र रे करोड़ों श्रमिका रे भविष्य के सुरक्षित करने री दिशा दे एक महत्वपूर्ण कदम आए। जेते थे तिना खे जो है आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जीने रे भी मौका मिला। एते योजना के ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि एते लाभ देश और हर पात्र जो है नागरिक है तीना के जो है से मिली सको। तो देखो एवे आपने सुनने वाले के कुछ खास खास खबर भी सुनानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबा रे हिता दे सरकार आरी 12 साल रे विकास और यात्रा के रेखांकित कित्या। नरेंद्र मोदी जी आज एक सोशल मीडिया पोस्ट दे बोलिया पई एते दौरान देश के बदलाव रे साक्षी बनया और गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इना बदलाव रे केंद्र बिंदु दे रहा। तिने बोलिया पई अंत्योदय हमेशा थे सरकार रही तई प्रेरणा स्रोत रहा और ये कोशिश रही पई विकास और लाभ दशका ते पीछे छूटे लोका तक पहुंची सको। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव आज उते शुरू हुई का ऐतिहासिक रिज मैदानों पांदे 12 जून तक चलने वाले एते उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी करना जबकि समापन समारोह दे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना। एते दौरान बॉलीवुड पंजाबी और दूजे प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकारा लोकारा मनोरंजन भी करना। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारा के अपनी कला प्रस्तुत करने का मौका देवा बल्कि देश विदेशों थे आने वाले पर्यटका और स्थानीय लोका के हिमाचली संस्कृति विरासत से भी रूबरू करवावा। आकाशवाणी ने आज गौरवशाली 90 साल पूरे हुए गए। साल 1936 दे आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये त्याड़ा देश और सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहासों दे एक विशेष मौके रूपों दे छपा दिया है जेते दे पीढ़िया तक राष्ट्र और चेतना से जुड़ने वाली वाणी रा अभ्युदय हुआ। आजादी थे बाद ऑल इंडिया रेडियो रा तेजी साथे विस्तार हुआ और 1956 दे एते के आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी रे 591 केंद्र आए जिना दे 23 भाषाओं और 140 बोलियां रे कार्यक्रम और प्रसारण हुआ। इनारी पहुंच देशोरी 98% आबादी तक आए। तो यो थी कुछ खास खास खबर। तो देखो अभी जानते जानते आपने सुनने वाला के एक लोकगीत फिर सुनाना।

सूरज मेहता रे गायलो गीतों साथे आ सारे कार्यक्रम रा वक्त भी होगा। मुलाकात होनी आने वाले मंगले यानी कि काल। तो दियो इजाजत सभी सुनने वाले के निशा शर्मारी राम राम।

कुल भी कार्यक्रम सुनने वाले सभी लोग ले गुलपाल वर्मा फिर के नमस्कार। आज के कुल भी कार्यक्रम अधि थारो सभी स्वागत आसा। तो आज हमारे अपने कुल भी कार्यक्रम अधि कुछ गलबात लानी, कुछ जानकारी देनी तो मलेरा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बारे दी। तो साथ ही हमारी जो सामाजिक बुराई रहा भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ गल बात इतने बारे दी मारे रिकॉर्डनी प्रदेश जो खास खास खबरिया सभी तो मैं कि सुनावनी रहा और साथ ही सुनावने बढ़िया बढ़िया कुल्लवी लोकगीत तलिया सभी के पहले मारे टिंकुए आवाज दी जो कुल्लवी लोकगीत सुनना।

एते हर पहले के जुन उद्देश्य तो सो लोगे गरिमा और तीन तई अवसर सुनिश्चित करनो तो। अगली खबर आ सके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज शिमले संजौली दी लगभग 54 करोड़ 18 लाख रुपये लागती के निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियमों लोकार्पण कियो। मुख्यमंत्री एवं मौके गई अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी शुभारंभ कियो रहा। एवं मौके गई तीने बोलो कि यह प्रतियोगिता उद्देश्य ऐसा लोगों में जो संदेश पहुँचाणो कि नशे के दूर रहनो। साथ ही तीने बोलो कि आज के ही मशोबरे स्थित मई लेते ही प्रदेश सरकारों पहलो नशा मुक्ति केंद्र भी शुरू हुआ और छे कैरा दूजो नशा मुक्ति केंद्र कांगड़ा खुलनो। ता एता बीचेरा अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज के शुरू होनो और ऐतिहासिक रिज मैदान की 12 जून तीन चलने वालों जो जो उत्सव है रहा ये तो शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी करन और समापन समारोह दी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि होने। तो इतने दौरान बॉलीवुड पंजाबी और होर प्रदेश अलावा हिमाचली कलाकार रातिना सभी आम जनों मनोरंजन करन और जो जो मंच रहा जो ना सिर्फ स्थानीय कलाकार आता बल्कि जो कला प्रस्तुत करने जो अवसर रहा सो देश विदेश के आने वाले जो पर्यटक स्थानीय लोग इन सभी ले रहा एक सांस्कृतिक विरासत का एवं रूबरू सब लोग करने। ता अगली खबर आशा कि आकाशवाणी हो रहा आज गौरवशाली 90 वर्ष सफर पूरा हुआ। ता वर्ष 1936 दी आज के दिहाड़े ऑल इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रहा शुरू हुई थी और ते तो नाम तो रहा ऑल इंडिया रेडियो। जुन जो दिहाड़ो रहा यू दिहाड़े सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास दे विशिष्ट अवसर रूपा दे हमें अंकित करी और जुन मारी पीढ़िया से राष्ट्र चेतना के जोड़ने वाली तीन तई जो एक आवाज आसा। आज़ादी बाद ऑल इंडिया रेडियो जुन गठित हुआ तो रहते तो तेजी के विस्तार हुआ और वर्ष 1956 दे ये तो नाम बदलो और नौ नाम तो रहा आकाशवाणी। ता आज आकाशवाणी हमें गल करी तो 591 केंद्र काम करते लागे ना और इतने माध्यम के 23 भाषा दी और 146 बोली ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ और इतने पहुँचे हमें जब गल करी तो देश लगभग 98% आबादी तय रहा आकाशवाणी पहुँचा सा और आकाशवाणी रहा देश जो विदेश सेवा विभाग आसा भारतवंशी एकजुट करने तई दुनिया 100 के ज़्यादा जो देश आ तेदी मारे देश आवाज़ पहुँचावा और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो आदर्श आसा ते तक आकाशवाणी चाला और रेडियो प्रसारण जो सर्वोच्च मानक आ तेथे अनुरूप काम कर। ता अगली खबर आसा कि प्रदेश कांग्रेस रा नीरज भारती विवाद की पार्टी ये जो अनुशासन समिति आते थे बैठक बुलाई और पार्टी महासचिव विनोद जिंटा आज शिमले बोलो कि नीरज भारती पर जो आरोप लागने सा से तथ्यहीन ना निराधार सा। साथ ही तीन बोलो कि पार्टी भीतरी कोई भी नेता ले या कार्यकर्ता ले अपनी गोल डाने पूरा अधिकार आ सा लेकिन इत तई कोई भी सार्वजनिक मंचो या सोशल मीडिया इस्तेमाल ना होना चाहिए। साथ ही तीन बोलो कि अनुशासन समिति जो बैठक आ तेत जो जो घटनाक्रम है तकी विस्तार के चर्चा होनी और साथ ही तीन बोलो कि भविष्य से कोई भी नेता या कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करा तो ते खिलाफ भी कार्रवाई होनी। अगली खबर आसा कि इता बीच रहा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज जी नीरज भारती फेरा के जो आरोप लायने आसा तेथे निष्पक्ष जांच मांग की और साथ ही तीन बोलो कि सच्चाई लोगे सामने आनी चाहिए। साथ ही तीन बोलो कि नीरज भारती फेरा के जो आरोप लागने से गंभीर आ और इत के कई सवाल खड़े हुआ। संदीपनी भारद्वाज जी बोलो कि प्रदेश जो कांग्रेस सरकार आसा तेते भीतर खींचतान चाली ना और ए बसो सार्वजनिक मंच तई पहुँच गई। ता जति प्रदेश कुछ खास खास खबरें ता एवे मारे एक होर कुल भी लोग ही छुड़नों।

तजिएर मारे जो कुलवी लोकगीत सुनेर रामलाल भारतीय आवाजी दी ता कुछ गलबात करनी मारे रा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बारे दी। स्वास्थ्य या सेहत रा कोई भी देशी प्रगति यो आधार होवा। जे देशी नागरिक स्वस्थ होवा, समाज स्वस्थ होवा, तसे शिक्षा, रोजगार, उद्योग और तरक्की जो काम आ और इतने जो क्षेत्र रहा इत अपनों से योगदान दे सका। तो अपने देश ही हमें गौल करी, मारो देश एक बहुत बड़ो देश है, विशाल देश है और यदि जो स्वास्थ्य सेवा रहा आम जनते पहुँचाना इतना आसान नहीं थी। महंगे इलाज, दवाई और गरीब और मध्यम वर्ग खास तौर के इन परिवार पहुँच के रहा बाहर आ सा। तो यह समस्या दूर करने ती केंद्र सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरुआत की थी रहा और हमारे देश की हमेशा कही रहा जो दवाई ऊंची कीमती जो एक समस्या रही और गरीब लोग अक्सर दवाई लेने के महरूम रहा, चाहे कोई बड़ी बड़ी बीमारी हुआ। तो इतने ती रहा जो दवाई कंपनियाँ थी ना आप में ही बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा रहा और ब्रांडिंग ये वजह के एक गुणा एक ही गुणा वाली जो दवाई रहा तेते अलग अलग जो ब्रांड आ कंपनियाँ तेते दवाई रेट भी रहा ते उस के अलग अलग आसा। ता इतने वजह के केंद्र सरकार शुरू की रहा जन औषधि योजना और शुरुआत इतनी हुई थी वर्ष 2008 दी और बाद के वर्ष 2015 दी ये तो पुनर्गठन हुआ और नौ नाव तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना और उद्देश्य मकसद जो

0: First innings at 564 for 8. India bowled Afghanistan out for 152 before lunch on day 3 and enforced the follow-on. The visitors were then dismissed for 112 in 35.5 overs, handing India a record victory inside 3 days. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। जय सिंह जी, क्या हालचाल हैं आपके?
4: बढ़िया हूँ रीता जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
3: जी हम भी ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान बागवान भाई बहन हैं वो भी तंदुरुस्त होंगे और इस समय जो उनके खेती बागवानी के काम हैं वो भी अब कर रहे होंगे
4: जी,
3: क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, बीच में बारिशें भी हो रही हैं और जहाँ कहीं हमारे किसान भाइयों ने आने वाली सब्जियों की पनीरी तैयार की है या फिर जहाँ कहीं पनीरी तैयार हो गई है, अब हमारे किसान भाई उसे रोपित करें और अनाज का भंडारण जहाँ आपने नहीं किया है वहाँ अब अनाज का भंडारण भी आप कर लें और अनाज को अच्छी तरह से सुखाएं तभी आप उसका भंडारण करें।
4: और साथ ही साथ जो है हल्दी की बिजाई है, अदरक की बिजाई है, कोचालू जो है वो उसकी भी बिजाई आजकल हो रही है और कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, बेल वर्गीय सब्जियाँ जो आपने किसान साथियों लगाई होगी उसमें भी आप समय पर पानी देते रहें और उनका जो रख रखाव भी अच्छी तरह से करें। आप अच्छी तरह से उनके लिए एक जाला बनाएं ताकि उनकी जो बढ़वार है अच्छी तरीके से हो सके
3: जी।
4: और मक्की की बिजाई का भी समय चला हुआ है
3: जी,
4: यदि आप समय रहते बिजाई करते हैं जो उत्पादन है वो भी अच्छा होता है। विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं उनकी आप उसमें बिजाई कर सकते हैं
3: जी।
4: बिजाई से पहले किसान साथियों ध्यान रखें कि कम से कम 2 से 3 बार आप खेत की जुताई जरूर कर लें
3: जी।
4: और उसमें जुताई में आप 2 से 3 दिन का अंतराल जरूर रखें ताकि जो खरपतवार है वह समाप्त हो जाए। इससे क्या होगा कि जो आपकी मक्की की बढ़वार है वो भी बढ़िया होगी और खरपतवार साथ में नहीं उगेगा, तो मक्की की गुड़ाई भी आपको हालांकि करनी है जब भी आपकी बिजाई हो जाती है
3: जी जी।
4: तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें।
3: तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फसल से जो है वो अच्छी उपज भी ले सकते हैं और आमदनी भी आपकी अच्छी होगी। तो कार्यक्रम में बढ़ते आगे, आज के जो मुख्य आकर्षण है कृषि जगत के उनकी जानकारी आपको देते हैं। काम की बातों में आज हम आपको जिस विषय पर जानकारी देंगे वो है मधुमक्खियों के रोग व उपचार। इसके अलावा लोकगीतों से आपका मनोरंजन करवाया जाएगा और हर रोज की तरह हम आपको विभिन्न तरह की जानकारियां देते हैं। आज जानकारी का विषय रहेगा संरक्षित खेती। डॉक्टर शिवाली ठाकुर से जानकारी हासिल करेंगे हैं हेमराज शर्मा। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जानकारी देते अपने किसान भाइयों को काम की बातों के तहत मधुमक्खियों के रोग व उपचार।
4: किसान साथियों, मधुमक्खियों के रोग और उपचार की बात करें इससे पहले यह भी जान लेते हैं कि हमारे जो किसान भाई है वो मधुमक्खी पालन करते हैं और उससे शहद उत्पादन भी लेते हैं
3: जी।
4: और सही और स्वस्थ शहद उत्पादन के लिए तो स्वस्थ मधुमक्खी का होना, मगों का होना भी बहुत जरूरी होता है
3: जी जी।
4: तो किसान साथियों, जो हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन करते हैं
3: जी,
4: उन्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है कि मधुमक्खियों के जब कई रोग लग जाते हैं, विभिन्न प्रजातियों के शिशुओं और वयस्कों को जो ये रोग है वो नुकसान पहुंचाते हैं। रोगों के यदि प्रकार की बात करें रीता जी,
3: जी
4: तो सबसे पहले बात आती है सैक ब्रूड वायरस रोग की। किसान साथियों, भारत में एपिस मेलिफोरा में यह बीमारी सबसे पहले 1998 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में आई थी। अब बीमारी का प्रकोप देश के अन्य राज्यों में पाली जा रही एपिस मेलिफेरा में भी देखा गया है
3: जी।
4: इसके रोग के जो रोकथाम और उपचार की किसान साथियों बात करें तो इस बीमारी के नियंत्रण का कोई निश्चित और प्रभावी उपाय तो नहीं है, लेकिन बीमारी को कम करने के लिए बहुत से उपाय जो है वो अपनाए जा सकते हैं। रोगग्रस्त मौनवंशों को स्वस्थ मौनवंशों से सबसे पहले दूर करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें
3: जी।
4: मौनवंशों को सुदृढ़ बनाए रखें और लूटपाट व घर छूट पर नियंत्रण रखें
3: जी।
4: बाहर से नए बकछूटों को ना पकड़ें, यदि पकड़ना आवश्यक हो तो ऐसे मौनवंशों को स्वस्थ नई रानी दी जानी चाहिए और साथ ही बकछूट के समय पकड़े गए मौनवंशों का लगातार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि बकछूट वाला मोरवंश किसी बीमारी से

0: रचित ना हो। उपकरणों व फ्रेमों को 1 घंटे तक साबुन से 1 से 2% और 1% फार्मेलिन के घोल में डुबोकर संक्रमण रहित करें। मोरमंसों को नई स्वस्थ रानियां दें। रोग के प्रति मोरमंसों का लगातार चयन, प्रजनन और संवर्धन करें।
1: इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं एपिस इरिडिसेंट वायरस की। ये विषाणु मधुमक्खियों के वयस्कों की झुंड बनाने वाली बीमारी से संबंध रखता है और 1975 में ये बीमारी कश्मीर तथा उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों में फैली थी और ये रोग मधुमक्खियों के मल, अंडों, ग्रंथियों के स्त्राव तथा बाह्य परजीवियों के माध्यम से होता है। इस समय भारतवर्ष में इस बीमारी का प्रकोप ना के बराबर है। अगर हम किसान भाइयों इसके लक्षणों की बात करें, गर्मियों के आरंभ में प्रभावित मधुमक्खियां मौन वंश के भीतर और बाद में बाहर की ओर झुंड बना लेती हैं। मधुमक्खियां वंश के नजदीक भूमि पर रेंगती हुई पाई जाती हैं। भोजन एकत्रित करना, अंडे देना और शिशु पोषण का कार्य लगभग बंद हो जाता है। प्रभावित मौन वंश 2 माह के भीतर समाप्त हो जाते हैं। विषाणु के बड़े कण मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं जो प्रभावित जीव के सफेद उत्तकों में चमकीले नीले से दिखाई देने लगते हैं। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम और उपचार की अगर हम बात करें तो आप क्या करें, रोगग्रस्त मौन वंशों को स्वस्थ मौन वंशों से अलग कर दें और बीमारी अवरोधी मौन वंशों से पैदा की हुई नई गर्भित रानियों से पुरानी रानियों को बदल दें। लूटपाट, बहक तथा घर छूट पर नियंत्रण रखें। मौनालिया में सामान्य स्वच्छता बनाए रखें। अत्यधिक प्रभावित मौनवंशों को आप नष्ट कर दें तो इस तरह आप इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं।
0: किसान साथियों, ये तो बात हुई एपिस इरिडिसेंट वायरस के बारे में। अब बात करते हैं यूरोपियन फाउल ब्रूड के बारे में। किसान साथियों, इस रोग के लक्षणों की यदि बात करें, इस बीमारी का प्रकोप कम उम्र के शिशुओं में अधिक होता है। प्रभावित शिशु सुंडियां उसकी 4 से 5 दिन में छल्ले नुमा अवस्था में ही मर जाते हैं और कभी कभी प्री प्यूपा अवस्था में ही मरते हैं। शिशु का रंग सफेद से बदलकर पीला हो जाता है। सूखने पर स्केल रबर जैसा हो जाता है। सड़े शिशुओं से खट्टी गंध आती है। रोग की गंभीर अवस्था में खुले व बंद शिशु कोष्ठ बिखरे दिखाई देते हैं और मौन वंशों में श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है। फाउल ब्रूड बीमारियों की रोकथाम व उपचार की यदि बात करें किसान साथियों, तो मौन वंशों को चीनी का घोल खिलाकर दूसरे वंशों से बंद ब्रूड की चौखटें व श्रमिक मधुमक्खियां देकर सुदृढ़ बनाए रखें। स्वस्थ मौन वंशों को अलग कर दें और अधिक रोगग्रस्त मौन वंशों को नष्ट कर दें।
1: जी
0: किसान साथियों, बीमारी वाली खाली फ्रेमों को आप 1% साबुन और फार्मेलिन 1% के घोल में कुछ देर डुबोकर संक्रमण रहित करें। एपिस मेलिफोरा में 250 से 400 मिलीग्राम प्रति 5000 मिलीलीटर चीनी के घोल 50% में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन खिलाएं और AFB के लिए। एपिस सिराना में फाउल ब्रूड के उपचार हेतु आप 100 मिलीग्राम सिप्रोफ्लोक्सिन वेटिनेरी ग्रेड 5% और 300 मिलीलीटर चीनी के घोल 50% में प्रतिवंश आप खिला सकते हैं। यह उपचार बीमारी के लक्षण प्रतीत होते ही कर लें। गंभीर स्थिति में इस दवाई को 2 दिन के अंतर पर 4 बार आप खिलाएं।
1: जी इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं मधुमक्खियों में लगने वाला रोग नौसीमा। ये सभी प्रजातियों की वयस्क मधुमक्खी की बीमारी है और इस रोग की गंभीर अवस्था में मौन वंश तेजी से कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। बीमारी जाड़े तथा बसंत ऋतु में ज्यादा फैलती है। किसान भाइयों, इनके लक्षणों की अगर हम बात करें, बीमार मधुमक्खियों का पेट फूल जाता है, साथ ही उन्हें पेचिश हो जाती है, मधुमक्खियों के पंख विकृत हो जाते हैं और वे मौन गृह में अथवा मौन गृह के आसपास घास पर रेंगती हुई मिलती हैं। छत्तों, इलाइटिंग बोर्ड और मौन गृह के अन्य भागों पर पीले रंग के मल के छींटे नजर आते हैं। पोषक मधुमक्खियां हाइपोफेरेंजियल ग्रंथियों के क्रियाहीन होने पर शिशुओं को पालना बंद कर देती है और संग्रह का काम शुरू कर देती है। प्रभावित रानी अंडे देना बंद कर देती है। मौन वंश कमजोर हो जाते हैं क्योंकि श्रमिक मधुमक्खियों का प्रजनन दर मृत्यु से कम हो जाता है। किसान भाइयों, अगर इसकी रोकथाम और उपचार की बात करें तो मौन वंशों को सर्द ऋतु में पर्याप्त मात्रा में भोजन दें तथा सुदृढ़ बनाए रखें। मौन वंशों को खुले धूप वाले स्थान पर रखें। मौनालय में ताजा और स्वच्छ पानी का

0: प्रबंध करें, मौन वंशों की पुरानी रानी को नई रानी से बदल दें, खाली छत्तों और उपकरणों को 80% एसिटिक एसिड से 150 मिलीलीटर प्रति मौन गृह की दर से कुछ दिनों के लिए धुनी दें। बीमारी के स्पोर नष्ट करने के लिए मौन उपकरणों को 24 घंटे तक 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक 50% आर्द्रता पर रखें। डिफेंटल एम 500 मिलीग्राम प्रति लीटर चीनी का घोल 50% में 15 दिन के अंतराल पर प्रति वंश खिलाएं। 200 मिलीग्राम फ्यूमिजिलीन प्रति 4.5 से 9 लीटर चीनी का घोल 50% प्रति वंश के हिसाब से खिलाएं।
1: तो किसान साथियों, कार्यक्रम में हमने बात की मधुमक्खियों के रोग और उपचार के बारे में और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम में रीता जी बढ़ते हैं आगे और किसान और बागवान भाई बहनों का मनोरंजन करवाते हैं एक प्यारे से लोकगीत के साथ।
0: जी, किसान भाइयों, करनैल राणा की आवाज में आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: किसान साथियों, करनैल राणा की आवाज़ में आपने सुना यह प्यारा सा लोकगीत। तो इसके साथ ही कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का। तो आइए सुनते हैं संरक्षित खेती इस विषय पर जानकारी पूर्ण बातचीत। कार्यक्रम में अधिक जानकारी देंगी डॉक्टर शिवाली ठाकुर और उनसे बातचीत करेंगे हेमराज। आइए सुनते हैं।
1: किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है और कृषि जगत कार्यक्रम में हर रोज विशेषज्ञों द्वारा हम आपको जानकारी देते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिवाली ठाकुर, जो कि हमें जानकारी देंगी संरक्षित खेती के बारे में। तो डॉक्टर शिवाली ठाकुर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संरक्षित खेती क्या है।
2: हेमराज जी, संरक्षित खेती पर आने से पहले मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे हमारे देश और प्रदेश के अधिकतर जो जनसंख्या है खेती का कार्य कर रही है। हमारे जो प्रदेश में कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं, चाहे तो हमारे जो प्रदेश को है वो देवभूमि भी कहा जाता है, और ये चाहे हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद समझिए कि विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा किसान है वो विभिन्न प्रकार की फसलें जो है वो इसमें उगा सकता है। हमने पिछले कई दशकों में हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने बहुत विकास किया है जिसकी वजह से, लेकिन विकास हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो हमारे किसान के पास है खेती योग्य भूमि जो है बहुत ही कम रह गई है, जो एक हमारे किसानों बागवानों के लिए एक चैलेंज बन गया है
1: जी।
2: और अब जो है हमारे ऐसी टेक्निक, ऐसी खेती की ज़रूरत है जो कम क्षेत्रफल से ज़्यादा आमदनी जो होगी वो हमारे किसानों को दे सके। दूसरा कि हमारा किसान शुरू से ही जब ट्रेडिशनल खेती करता है, खुले में खेती करता है, तो उसे बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है मौसम संबंधी। उसे मौसम की तरफ देखना पड़ता है कि वो अब फसल बोए, अब फसल काटे। तो अब जैसे कई फैक्टर्स हैं मौसम संबंधी, जैसे बहुत तेज़ बारिश हो जाना, ओलावृष्टि का पड़ना, और बहुत तेज़ गर्मी होना, सूखा पड़ना आदि, और इसके साथ ही कई बार बहुत सारी बीमारियाँ फसलों में आ जाती है, बहुत सारे कीड़े कीटों का प्रकोप हो जाता है जिससे किसान को बहुत नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं से जो है हमारा किसान जूझ रहा है। तो संरक्षित खेती एक ऐसी खेती है, ऐसी टेक्निक है जिसमें माइक्रो क्लाइमेट यानी कि सूक्ष्म जलवायु को नियंत्रित करके जो किसान है वो पूरा वर्ष भर अपनी फसल को उगा सकता है, और ये जो समस्या जिसका हमने अभी जिक्र किया है उससे जो है हमारे किसान को सुरक्षा प्रदान करता है
1: जी। डॉक्टर शिवाली ठाकुर, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन अगर संरक्षित खेती को अपनाएंगे तो उन्हें काफी फायदे हो सकते हैं।
2: जी जी।
1: डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संरक्षित खेती के फायदे हमारे किसान और बागवान भाई बहन कैसे उठा सकते हैं।
2: देखिए, संरक्षित खेती के बहुत से फायदे हैं। संरक्षित खेती को हम, जो हमारे किसान बागवान हैं, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत फायदे हैं, जैसा मैंने कहा कि जो हमारा किसान है वो पूरा वर्ष भर जो है अपनी फसल को उगा सकता है, और ऑफ सीजन मार्केट में जो है ऑफ सीजन अपनी फसल को लाकर बहुत आमदनी जो है वो कमा सकता है। दूसरा, ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, संरक्षित खेती में जो फसल हमारा किसान उगाता है उस फसल की जो पैदावार होगी, प्रोडक्शन होगी, वो भी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल खेती, खुले में अगर वो खेती करके वही फसल खुले में लगाता है तो उसकी पैदावार से कहीं गुना बढ़कर पैदावार होगी संरक्षित खेती को अपनाकर।
1: मतलब ज्यादा पैदावार,
2: ज्यादा पैदावार जो है
1: प्राप्त हो सकती है
2: जी, और पैदावार के साथ साथ जो उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी संरक्षित खेती के द्वारा जो है वो अच्छी फसल उनको मिलेगी गुणवत्ता वाली। तीसरा, कम क्षेत्रफल से वो ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं। जैसे एक बीघा वो अगर हमारा किसान खुले में खेती करता है एक बीघे एरिए में, तो उसको 40,000 से 50,000 की आमदनी होती है, लेकिन अगर यही वो किसी ग्रीन हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन द्वारा खेती करता है तो उसे ये 2-3 लाख, 3 से

0: 5 लाख तक भी इसको आमदनी होगी सेम एरिया से। आजकल हम देख रहे हैं कि जो एक पानी की समस्या है वो बहुत ही एक इशू है यहाँ पर, कि वाटर टेबल्स भी हमारे बहुत डाउन चले गए हैं, पानी की बहुत कमी हो गई है। तो संरक्षित खेती के माध्यम से पानी का भी बहुत अच्छे से खपत होती है, खपत भी बहुत कम होती है, तो पानी का इसमें लगभग 60-70% पानी की बचत होती है। और फिर संरक्षित खेती द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक फायदा है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 1 हेक्टेयर पे अगर हम संरक्षित खेती करते हैं तो उसमें लगभग 3 से 4 लोगों को रोजगार मिलता है
1: जी।
0: तो ये एक रोजगार का भी एक जरिया है। फिर आजकल हम जैसा देख रहे हैं कि हमारे खाने में, हमारी कई चीजों में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज जो है आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर वो जा रहे हैं खान पान में। तो संरक्षित खेती अगर हम अपनाते हैं तो उसमें कीटनाशकों और फफूंद नाशकों का भी बहुत कम यूज होता है। तो इस प्रकार से संरक्षित खेती है, जैसे जैसे समय बदल रहा है तो समय के अनुसार हमें अपनी खेती में भी बदलाव करना पड़ेगा, और संरक्षित खेती एक अच्छा प्रयास है इस ओर। तो निश्चित तौर पर ये जो संरक्षित खेती है ये इस अपने को पूरा करने में कारगर साबित होगी।
1: जी डॉक्टर शिवाली ठाकुर, ये तो बहुत अच्छे फायदे आपने संरक्षित खेती के हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को बताएं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन संरक्षित खेती को किस प्रकार शुरू कर सकते हैं।
0: हेमराज जी, संरक्षित खेती डिपेंड करेगा जो हमारा किसान बागवान है वो किस प्रकार के कार्य जो है वो करना चाहता है। जैसे अगर वो नर्सरी उत्पादन का कार्य करना चाहता है, नर्सरी पौधे तैयार करना चाहता है, वो भी संरक्षित खेती द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में तैयार हो सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार हो सकते हैं। जैसे हम आम, लीची, सेब, गुठलीदार फलों के जो हम पौधे तैयार करते हैं ग्राफ्टिंग और बडिंग द्वारा, तो अगर हम संरक्षित खेती के अंदर हम तैयार करें, पॉलीहाउस के अंदर तैयार करें, तो इसकी जो ग्राफ्टिंग और बडिंग की सफलता दर है वो भी बढ़ती है एज कम्पेयर टू खुले में अगर हम करते हैं। फिर अगर सब्जियों या फूलों की पनीरी लगाना चाहते हैं हमारे किसान बागवान भाई बहन, तो उसके लिए भी टनल्स बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं, और इसमें जब आप बीज बोते हैं तो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि जो अंकुरित होने वाले पौधों की संख्या है वो भी संरक्षित खेती द्वारा जो है वो बढ़ जाती है। तो और नेचुरल सी बात है, नर्सरी अगर हमारी अच्छी होगी, अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, तो हमारी आगे फल पौधे और जो हमारी फसल है वो भी स्वस्थ हमें मिलेगी।
1: जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि संरक्षित खेती में प्रयोग होने वाली कौन कौन सी संरचनाएं हैं।
0: जी, संरक्षित खेती में बहुत सारी संरचनाएं हैं, जैसे पॉलीहाउसेज हुआ, हम सभी जानते हैं, हमारे किसान बागवान भाई बहन भी जानते हैं, पॉलीहाउस जो है वो एक GI पाइप से बना हुआ एक ढांचा है
1: जी,
0: जिसपे पॉलीथीन शीट का प्रयोग किया जाता है। और पॉलीथीन शीट के भी पैरामीटर्स है, जैसे 200 माइक्रोन की जो है पॉलीथीन शीट होनी चाहिए, UV रेजिस्टेंट होनी चाहिए और एंटी ड्रिप होनी चाहिए। तो ये क्वालिटीज जो है, जो हम ग्रीन हाउस तैयार कर रहे हैं, पॉलीहाउस तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वालिटी होना पॉलीथीन शीट में जरूरी है। जैसे हमारे किसानों के सामने कई बार समस्या आ जाती है, वो देखते हैं कि पॉलीहाउस के अंदर जब सुबह जाते हैं वो, तो वो देखते हैं कि पॉलीहाउस के अंदर एक पानी की बूंद बूंद करके पानी रिसता है और उनकी फसल पर गिरता जाता है
1: जी,
0: जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है,
1: नुकसान पहुंच जाता है।
0: तो अगर हम ऐसी क्वालिटी की हम पॉलीथीन शीट लेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी रहेगी एंटी ड्रिप, तो इस समस्या हमारे किसान को समाधान मिल जाएगा, उसमें ये पानी की बूंदे नहीं बनेंगी
1: जी।
0: और दूसरा, फिर ये तो रहा पॉलीहाउस क्या चीज है। अब पॉलीहाउसेस में भी कई तरह के होते हैं, जैसे फैन एंड पैड सिस्टम
1: जी,
0: जिसमें कम लागत से तैयार हो जाते हैं और ज्यादा लागत से
1: जी।
0: जो हमारा फैन और पैड सिस्टम है पर ज्यादा खर्चा होता है और ये गर्म इलाकों के लिए ज्यादा जो है वो उपयोगी होता है। जैसे 1,000 स्क्वायर मीटर का अगर पॉलीहाउस फैन एंड पैड सिस्टम लगाते हैं तो इसपे लगभग 17 लाख का खर्चा होता है। ऐसे ही तो ये था फैन एंड पैड सिस्टम, ऐसे ही आता है नेचुरली वेंटिलेटेड सिस्टम, तो ये मध्यमवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है और फैन और पैड जो ये सिस्टम है उसके मुकाबले इसमें कम खर्च होता है। जैसे अगर 1,000 स्क्वायर मीटर का जो है वो लगाता है नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, तो उसमें लगभग 11 लाख का खर्चा होता है। और इसमें नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज में साइड वेंटिलेशन होती है, हवा आने जाने के लिए जो है इसमें प्रावधान किया होता है। और फिर आता है शेड नेट हाउस, छायादार जाली जिसे हम कहते हैं, इसमें पॉलीथीन शीट का प्रयोग नहीं होता। अक्सर हमारे किसान बागवान भाई बहनों देखा होगा, मोस्टली जो है वो हमारे जैसे फूलों की पौधे तैयार करने के लिए रोड के किनारे लोगों ने वो शेड नेट हाउस बनाए होते हैं, वहां से वो पौधों की बिक्री करते हैं, ज्यादातर उनके लिए ये यूज होता है। फिर आता है हमारा वॉकिंग

0: टनल। इसमें भी नेचुरली वेंटिलेटेड और फैन एंड पैड सिस्टम के मुकाबले कम खर्च होता है। इसमें लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का अगर किसान वॉक इन टनल लगाता है, पॉलीहाउस लगाता है, तो उसमें लगभग 6 लाख का खर्चा है। इस प्रकार ये तो हुई पॉलीहाउसेस की बात।
1: अच्छा डॉक्टर शिवाली ठाकुर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षित खेती में किन किन चीजों का ध्यान हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को रखना पड़ता है।
0: जी, सुरक्षित खेती में सबसे पहले तो मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, ताकि जो है हमारा किसान मिट्टी की गुणवत्ता को जान सके। फिर दूसरा कि जिस जगह व स्थान पर किसान जो है वो ग्रीन हाउस पॉलीहाउस लगाना चाहता है, ये भी बहुत जरूरी है कि उसके हिसाब से पॉलीहाउस का निर्माण होगा। जैसे बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्र हैं आपके, जहाँ बर्फ पड़ती है, तो वहाँ फैन एंड पैड या नेचुरली वेंटिलेटेड जो हमने अभी जिक्र किया वो तो नहीं बनेगा, तो वहां पर जो है गेबल नुमा या क्विंसेंट जो पॉलीहाउस है वो बनेंगे। तो इन पॉलीहाउस में जो ठंडे क्षेत्रों के लिए, उनकी छत कुछ इस प्रकार से होती है कि वहां पे बर्फ नहीं टिकती है, बर्फ जो है वो
1: जल्दी पिघल जाती है,
0: उसमें टिकती नहीं है। और दूसरा, अंदर से एक जाली होती है जो बर्फ के भार को सहन कर सकती है। तो ये है ठंडे क्षेत्रों के लिए। और फिर जो हमारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जैसे लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति वगैरह हैं, वहां पर दो प्रकार के जो है ग्रीन हाउस वो बनाए जाते हैं, जैसे लीन टू टेक लगे हुए जिसे हम कहते हैं, और ट्रेंच टाइप। टेक लगे हुए पॉलीहाउस वो है जो वो अपने घर की दीवार के साथ लगा के उसको बनाते हैं। और ये जो पॉलीहाउस है ये दक्षिण साउथ डायरेक्शन में बनता है
1: जी,
0: ताकि वो मैक्सिमम धूप का उपयोग वो कर सके
1: जी।
0: और ऐसे ही ट्रेंच टाइप जो है ये जमीन के अंदर होता है, सिर्फ जो छत है वो जमीन के ऊपर होती है, और इसमें जो है जमीन के अंदर की जो गर्मी है वो यूज होती है फसल उत्पादन के लिए। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वहाँ के लोगों ने इसको अपनाया है। और जहाँ उनका जो टाइम पीरियड था, स्पैन था फसल उगाने का 2-3 महीने का, वो बढ़कर 5-6 महीने हो गया है
1: जी।
0: तो वहां से काफी जो है ये आमदनी हो रही है। फिर जिस भी कंपनी से जो है हमारे पॉलीहाउस लगाए जाते हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, और जो उसमें मटेरियल लगे वो BIS स्टैंडर्ड का होना चाहिए। फिर सबसे अहम बात कि हमारा किसान जो है वो पॉलीहाउस लगा लेता है, लेकिन प्रॉपरली उसे मेंटेन नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए, तब भी वो फेल हो जाता है। तो ये जरूरी है कि जब आप पॉलीहाउस लगा लेते हैं तो उसको अच्छे से मेंटेन करें। जैसे अगर तापमान ज्यादा है तो आप साइड पर्दे खोल दें और फॉगर्स चला दें, जिससे जो है तापमान में कमी आ जाएगी। और अगर ठंड का समय है तो आप शाम को जो है पर्दे बंद कर दें, और सुबह 10-1 बजे खोले, शाम को 3-4 बजे उसे बंद कर दें। तो ये जो चीजें हैं इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है,
1: तापमान का ध्यान रखना बहुत जरूरी
0: जी,
1: है।
0: जी जी जी
1: तो डॉक्टर शिवाली ठाकुर, आप हमारे स्टूडियो में आए और संरक्षित खेती के बारे में आपने किसान और बागवान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: किसान भाइयों, अभी आपने संरक्षित खेती इस विषय पर पुनः प्रसारण सुना। डॉक्टर शिवाली ठाकुर से जानकारी हासिल कर रहे थे हेमराज शर्मा। तो कार्यक्रम में बढ़ते आगे किसान भाइयों, स्मूथ स्वरों में आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत के साथ अब कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर।
1: सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। अनुभव जिन

0: के पास अपार वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
0: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा में किया प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पहाड़ों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण बन रहा है प्राकृतिक आपदाओं का कारण। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। और कोकसर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राज्यपाल आज शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में नशा, विशेषकर चिट्टी की चुनौती, केवल कानूनी व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत से चिट्टी की चुनौती को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संजौली में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया।
5: समर फेस्टिवल शिमला का आगाज हर वर्ष होता था, इस बार इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीमें वो सम्मिलित हो रही है और इसमें चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल जो हमारा ये आयोजन है इसके लिए आज शिमला समर फेस्टिवल से आज इसकी शुरुआत। मशोबरा में पहला डी एडिक्शन सेंटर जो हमारी लेडीज है उसके लिए खोला जा रहा है।
4: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद आज कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव

का संबंध अत्यंत गहरा है और हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए इसके साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का सम्मेलन आज चंडीगढ़ में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कर रहे हैं। पठानिया बीती रात ही इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। उनके साथ विधायक संजय रतन, केवल सिंह पठानिया, नीरज नैयर, राकेश जम्वाल, रीना कश्यप और कमलेश ठाकुर भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कल 9 जून को सम्मेलन में विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर अपना संबोधन देंगे। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय

0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने आज कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। डॉक्टर जनकराज ने हृदय रोग विभाग में और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का भी सरकार से आग्रह किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि माता पिता का त्याग व समर्पण ही बच्चों की सफलता की असली नींव है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार आज सरस्वती विद्या मंदिर शिमला द्वारा मेधावी और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य किताबी ज्ञान या डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में चाहे सफलता के किसी भी सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अपने गुरुजनों का स्थान हमेशा सर्वोपरि रखें और उनका सम्मान करें। उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। विनोद जिंटा ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने नीरज भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 5-6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जाँच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी।
1: कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से सूटकेस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह की कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। जो भी आरोप है वो गंभीर है और हिमाचल की जनता आने वाले 2027 में इसका जवाब देगी।
0: लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। SDM कुनिका एकर्ज ने कहा कि ये निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है।
2: यही अनुरोध रहेगा समस्त टूरिस्ट जो विजिट कर रहे हैं रोहतांग पास के लिए फ्रॉम कोकसर साइड, कि आप लोग ऑनलाइन पासेस के लिए अप्लाई कर लें rohtangpermits.hp.gov.in पे, अन्यथा पुलिस बैरियर पे आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता अब से थोड़ी देर बाद करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी और अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष

0: का कार्यकाल जनसेवा, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास की एक सशक्त मिसाल है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस अवधि में देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है और आम नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जवाबदेही शासन की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला भाजपा द्वारा आयोजित मोदी सरकार के 12 साल विकास के नाम कार्यक्रम को भी संबोधित किया। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में फिर से मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को कड़क धूप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा में किया प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पहाड़ों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण बन रहा है प्राकृतिक आपदाओं का कारण। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। और कोकसर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी शिमला है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी।
1: हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ

जुड़े हैं आप और भूले बिसरे गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का आज के इस कार्यक्रम में, और आज आपको सुनाएंगे वर्ष 1950 के दशक में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों के कुछ ऐसे खूबसूरत तराने जो आज के दौर में भी अपनी धुन से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर जाएं। शुरुआत करते हैं सरगम फिल्म के इस गीत से।

0: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: ओए बापू,
1: अरे की है बरखुरदार।
2: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
0: की है बोल भी।
2: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार, रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
0: हाय की कहे की कहे, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।

0: ला रुपया।
1: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
2: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
3: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ, जा घोड़ा ले आ, कर जाने की तैयारी, कर जाने की तैयारी। हीरे की हसली दऊंगो, मोती को हार दऊंगो, लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
2: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ई कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात,
2: ले ले बढ़ा दो हाथ, ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: भैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ हाँ बोल दे बेटा।
3: बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया। बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया।
4: जमाना कोई भी हो, दौर कैसा भी हो, पुराने गीतों की जब बात आती है तो शब्दों की गहराई, दिलों में प्यार और सादगी का एहसास हो ही जाता है। ये गीत जो अभी आपने सुना, 75 साल पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन बोल और संगीत अभी भी ऐसे लगता है जैसे कि आज के यथार्थवाद को ये व्याख्यान कर रहा है उसका। तो चलिए अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं आवारा फिल्म से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं FM शिमला से, और गीत संगीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया है सगाई फिल्म से।

एफएम शिमला से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। मंगलवार यानी 9 जून 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है वहम की बीमारी यानी कि ओसीडी एवं मानसिक स्वास्थ्य। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी 9 जून 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के मध्य हमारे फ़ोन नंबर 28080034 और 28081152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित रहेंगे। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिएगा 2808034 2808152। सूचना समाप्त हुई। गीत संगीत का सिलसिला जारी रखते हुए सुनते हैं अगला गीत।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश हमने ली है चोरी चोरी फिल्म से। जी हाँ, और आवाज़ है लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी के बोल और संगीतवत किया है इस गीत को शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं।

0: इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र

0: निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: टीनी ने आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला के साथ, और लीजिए आनंद फिल्म संगीत का। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं साजन फिल्म का ये गीत।

दिल की धड़कन और मेरी सदा है वो, मेरी पहली और आखिरी वफा है वो, चाहा है उसे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है वो। साजन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म से।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप। समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 के लिए आइए ले चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और

0: पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताज़ा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जलजनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में

0: उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सॉन्ग आपने इंजॉय किया और बहुत से हमारे लिसनर्स जान भी चुके होंगे कि आज की हमारी फिल्म है डार्क द फायर। जी हाँ, राजकंवर के निर्देशन में बनी ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 फरवरी 1999 को और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे फिल्म में संजय दत्त, चंद्रचूड़ सिंह, महिमा चौधरी और साथ में थे शक्ति कपूर भी। जी हाँ, और अगर हम बात करें संगीतकार की तो राजेश रोशन और नरेश शर्मा ने संगीत दिया है गानों को और एक्शन थ्रिलर मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से थी। पूर्व भारतीय सैनिक करण सिंह अपने ईमानदार पिता सत्य प्रकाश सिंह की सज़ा का बदला लेना चाहते हैं, जिन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया था। उनकी सज़ा एक झूठे आरोप और चालाक लॉयर रवि वर्मा द्वारा चलाए गए मुकदमे का नतीजा थी, जिसे रवि कुमार के ससुर सिंघल का समर्थन भी प्राप्त था। काजल भ्रष्ट रवि की पत्नी है, जो लगभग हर अदालती मुकदमा जीत भी जाता है। एक अदालती मुकदमे के दौरान वो एक ईमानदार व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर उसे भ्रष्टाचार का दोषी ठहरा देता है, जिसके बाद वो शर्म से आत्महत्या भी कर लेता है। उसका बेटा मेजर करण बदला लेने की कसम खाता है और एक दिन काजल और रवि की पार्टी के बाद करण रवि पर सीधे पिस्तौल से गोली भी चला लेता है, लेकिन काजल अपने शरीर को ढाल बनाकर अपने हस्बैंड को बचा लेती है। करण दूसरी बार गोली चलाता है और रवि की रीढ़ की हड्डी में गोली लगती है, जिससे उसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा चला जाता है। डॉक्टर्स ने उसे रेट्रोग्रेड एमनेसिया से पीड़ित बताया और अस्पताल में काजल की चोटों के कारण मौत हो जाती है। रवि की याददाश्त तो वापस लाने के प्रयास में सिंघल काजल जैसी दिखने वाली एक महिला काजरी से अस्थायी रूप से रवि की पत्नी होने का नाटक करने का अनुरोध करता है। हालांकि जिद्दी करण अभी भी अस्पताल में रवि का पीछा करके उससे बदला लेने की ठान लेता है और रवि को मारने की योजना भी बनाता है। करण और काजरी करण के पिता की बेगुनाही साबित करने

वाले सभी सबूत इकट्ठा करते हैं और इसी बीच रवि की याददाश्त वापस आ जाती है और वो करण के प्रति सहानुभूति दिखाने लगता है। कजरी की मदद से वो करण से वादा करता है कि पूरी तरह ठीक होने के बाद वो अदालत में सभी सबूत पेश करके साबित कर देगा कि करण के पिता वास्तव में निर्दोष थे, बल्कि उन पर गलत तरीके से मुकदमा भी चलाया गया था और घटनाक्रम का पता चलने पर सिंघल रवि पर पलटवार करता है। कहानी यूं ही आगे बढ़ती है और इसी बीच सिंघल और रवि के बीच एक बड़ा फैमिली झगड़ा शुरू हो जाता है। रवि करण की मदद से अंतिम अदालती मुकदमा जीत जाता है और अंततः असली अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। रवि और कजरी खुशी खुशी एक हो जाते हैं और करण स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और रवि से अदालत में उसका पक्ष रखने का भी अनुरोध करता है। ये थी फिल्म की कहानी। हम बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं दाग द फायर फिल्म के सॉन्ग्स। जी हाँ, और फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस की अगर हम बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफल रही। इसकी कहानी 1991 की अमेरिकी फिल्म रिगार्डिंग हेनरी से प्रेरित थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का लास्ट सॉन्ग।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ट्यूनिंग है आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और टाइम है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुनकर। जी हाँ, ईमेल बेस्ड इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी मेल्स के ज़रिए, और हमारी मेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। और आज जिन मूवीज़ के

सॉन्ग्स आप इंजॉय कर सकते हैं, उनमें शामिल है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अंदाज अपना अपना, जब जब प्यार हुआ, सन ऑफ सरदार और धरती पुत्र। तो उठाइए जल्दी से फ़ोन और हमें कीजिए मेल, साथ ही साथ सुनते रहिए गीत संगीत भी। जी हाँ, और देखिए बातों ही बातों में आज की जो फर्स्ट मेल है हमें मिल भी चुकी है, छत्रपति संभाजी नगर से मेल कर रहे हैं हमें राजेश सावसे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत, तो चलिए सबसे पहले हम सुनाने जा रहे हैं दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और जो नेक्स्ट मेल हमें मिली है, भेजी है हमें नागरकोहरा ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, मेल करने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। और ये सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत, और साथ ही साथ

हमें मेल मिली है सुदर्शन शाह की। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और साथ में है इनके राजेंद्र जी शाह। ये सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी सॉन्ग, साथ में हमें मेल मिली है, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। जी लिखते हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पूरा मध्य प्रदेश से मुना भाई स्वरणकार, पिंकी स्वरणकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वरणकार, साथ में धन्यवाद भी ये लिखते हैं। और अगली जो मेल शामिल करने जा रहे हैं कार्यक्रम में, हमें भेजी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू ने, तो ये सुनना चाहते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म का कोई सा भी गीत। गांव हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा की हमें मेल मिली है, ये भी सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज की हमारी मूवीज़ हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अंदाज अपना अपना, जब जब प्यार हुआ, सन ऑफ सरदार और धरती पुत्र। तो जिस भी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं आप हमें मेल करके बता सकते हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ये भी लिखते हैं अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुना दीजिए। जी खुश रहो, खुशियाँ बांटो, क्या बात है, और दिल की आवाज़ भी सुनने भी बेहद प्रिय है कार्यक्रम। आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, आपकी पसंद का सदाबहार कोई भी गीत सुना दीजिए। लिखते हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वानकर, प्रिंस एकांश सुमित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर परी, मेहर नगर उमरखेड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, राही सरिता प्रणीता सिद्धांत और लाडला टुक टुक ग्वानकर। और एक और मेल शामिल करने जा रहे हैं कार्यक्रम में, नाभा जिला पटियाला पंजाब से हमें मेल की है सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमीत कौर मन्नू, और ये भी सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। आदरणीय उद्घोषक महोदया जी को नमस्कार, लिखते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत सुना दीजिए। जी राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश पहले भी आप कॉल कर चुके हैं। और अनिल मोहन की हमें मेल मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक और मधु नायक, ये सुनना चाहते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म का कोई सा भी गीत। राजपाल शर्मा ने हमें मेल की है आदर्श नगर मलोटी पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, साथ में है मैंडी शर्मा, तो ये सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। तो चलिए आप तमाम लिसनर्स के लिए प्ले कर रहे हैं अंदाज अपना अपना फिल्म का ये गीत।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुनना आप पसंद रहे हैं एफएम शिमला से। और प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल आइए जान लेते हैं किसकी है। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल की है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पिंदरमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने ये सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हमें मेल मिली है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत की। सुनना चाहते थे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का कोई सा भी गीत। नेक्स्ट मेल हमें भेजी है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने। लिखते हैं सप्रेम नमस्कार जी और ये सुनना चाहते हैं जब जब प्यार हुआ फिल्म का कोई सा भी गीत। बहुत सारी मेल्स हमें मिल रही है। आर कुमार की हमें मेल मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया ये लिखते हैं आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, किसी भी गीत में शामिल कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद आपका और प्लीज़ कहने की कोई आपको आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आपकी फरमाइश पूरा करना हमारा प्रयास भी रहता है और हमारा फ़र्ज भी है। राधे राधे नमस्कार लिखते हैं लाजवाब प्रस्तुति शानदार प्रोग्राम, अजीत कसाना, माया देवी, रितिक और आदित्य कसाना लदावली ज़िला मुरादाबाद से इन्होंने हमें मेल की है और ये भी हमारी ही चॉइस का कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। माखन वर्मा अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से, माखन वर्मा के साथ है चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा ये सुनना चाहते थे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का कोई सा भी गीत और उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने ये गीत इंजॉय भी किया होगा। जसबीर सिंह लिखते हैं आकाशवाणी के 90 साल होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां जी। धन्यवाद जी। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा के साथ है जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ये भी सुनना चाहते हैं किसी

भी फिल्म का कोई सा भी गीत। लोभाराम गुंजेटा छुपाड़ी रोडू से हमें मेल कर रहे हैं, साथ में हैं इनके तारा सिंह गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, एल आर गुंजेटा और अनुज और मुकुल गुंजेटा। ये सुनना चाहते हैं जब जब प्यार हुआ फिल्म का कोई सा भी गीत। रामजी साहू की हमें मेल मिली है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, इनके साथ में हैं जीवन लाल रजक, नीमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और ये हमारी ही पसंद का कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का कोई सा भी गीत सुना दीजिए जी, लिखते हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और एक और मेल शामिल करना चाह रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। जलालाबाद वेस्ट से हमें मेल मिली है सुरेश गगनेजा की, साथ में है पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ये सुनना चाहते हैं जब जब प्यार हुआ फिल्म का कोई सा भी गीत। तो चलिए आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं ये गीत।

दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप और बहुत सारी मेल्स हमें मिल रही है। प्रयास है सभी मेल्स हम शामिल कर पाएँ। कार्यक्रम पेश करने वाले को हमारा नमस्कार। लिखते हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी स्वामी ये सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। रजक मोहम्मद का हमें जो मैसेज आया है मेल के थ्रू, लिखते हैं प्यार भरा नमस्कार जी, और राजस्थान से रजाक मोहम्मद के साथ है सामिन बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशन खान। सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर।

अमरावती से हमें मेल मिली है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडा ने की। और ये सुनना चाहते हैं सन ऑफ सरदार फिल्म का कोई सा भी गीत। प्रकाश वर्मा ने हमें मेल की है, सुनना चाहते थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत। इनके साथ में है प्रिंस और निखिल वर्मा, साथ में यशस्वी वर्मा भी है। छत्तीसगढ़ पलारी से इन्होंने हमें मेल की है और साथ ही साथ हमें मेल मिली है पूनम गगनेजा की, ये भी सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी सॉन्ग। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हमें मेल मिली है गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत की, ये सुनना चाहते हैं धरती पुत्र फिल्म का कोई सा भी गीत। और जो अगली मेल शामिल करने जा रहे हैं कार्यक्रम में, ये हमें भेजी है जी आर पॉल और पूरा पॉल परिवार है इनका। इन्होंने अपनी लोकेशन लिखी है सराभा नगर जलंधर पंजाब।

0: हेम प्रभा पुष्पराज और सूरज राजपूत की, ये सुनना चाहते हैं धरती पुत्र फिल्म का कोई सा भी गीत और जो अगली मेल शामिल करने जा रहे हैं कार्यक्रम में, ये हमें भेजी है जीआर पॉल और पूरा पॉल परिवार है इनका। इन्होंने अपनी लोकेशन लिखी है सराभा नगर जलंधर पंजाब। किसी भी गीत में हमें शामिल कर लेना जी, लिखते हैं विकी सिंह जी। तो अगली मेल जो हमें मिली है मसरूर दतरंगी भाटा पारा से, इन्होंने हमें मेल की है। और हमें मेल मिली है तड़ी पार, इन्होंने अपनी लोकेशन लिखी है। सूरज और सुनिधि सुनना चाहते हैं हमारी ही चॉइस का कोई सा भी सॉन्ग, तो चलिए प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग। फिल्म है सन ऑफ सरदार।
1: कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार।

सना अफ सरदार जी, हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुन रहे थे। और देखिए, हमारा कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है और एक और मेल शामिल करने जा रहे हैं। अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत ही सुनना चाहते थे। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू राजस्थान से इन्होंने हमें मेल की। और मेल करने वाले हैं संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा और सोमल कार्तिक, समस्त इनका सोनग्रा परिवार। और साथ ही साथ वर्मा ब्रदर्स की हमें मेल मिली है। लिखते हैं, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा भी हैं इनके साथ। इन्होंने हमें मेल की है। नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिल्का से किसी भी फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की हमें मेल मिली है। साथ में है तलत महबूब, हेमंत कुमार, महेंद्र कपूर और ये सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी गीत। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना, सुनना चाहते हैं किसी भी फिल्म का कोई सा भी सॉन्ग। तो चलिए, आप सभी के लिए सुना रहे हैं प्रोग्राम का लास्ट

दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम में आज बस इतना ही। जिन लिसनर्स की मेल्स आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाई उनके लिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं और ये समय रहता है गजलों के कार्यक्रम का। तो क्यों ना कार्यक्रम का आगाज किया जाए इस गजल से जिसे गाया है गुलाम अली ने। आइए सुनते हैं।

सुकून चैन अपना लुटाते लुटाते कहाँ आ गए हम, गम उठाते उठाते चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। गज़लें आप सुन रहे हैं एफएम शिमला से, और गज़लों की लड़ी में अगला मोती आइए पिरोते हैं अबीदा परवीन की आवाज़ में।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और हमेशा की तरह चुनिंदा फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे इस कार्यक्रम में। सदाबहार नगमे ऐसे गीत जो समय के साथ भुलाए नहीं गए अभी तो आज भी हर दिल अजीज है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत से जिसे गाया है आशा भोसले और सुरेश वाडेकर ने।

तमाम उम्र बस एक ही सबक याद रखा, इश्क तुमसे किया और तुमको ही आबाद रखा। परिंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है और इस गीत को सुनकर आप भी अपनी सुनहरी यादों में खो जाएंगी।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अपने समय में तो ये गीत सुपरहिट रहा ही, आज भी अगर कहीं हम सुनते हैं इस गीत को तो हमारा दिल करता है सुकून से बस सुन लिया जाए, और इसका संगीत और बोल दोनों ही दिल में उतर जाते हैं, दिल को छू जाते हैं। सदाबहार नगमे कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर, और अब जो गीत आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमने लिया है अमृत फिल्म से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल ने। आनंद बख्शी के बोल है और संगीत से गीत को सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। मंगलवार यानी 9 जून 2026 को प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है वहम की बीमारी एवं मानसिक स्वास्थ्य। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी 9 जून 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के मध्य हमारे फ़ोन नंबर 28080034 और 28080152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित रहेंगे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है

0: इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।